0: आशा भोसले और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। मदन मोहन का संगीत था राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम आपकी परछाइयां। नवजीवन, नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही बांसुरी की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग उस भोर को और भी सुहाना बना देता है। और राधा जी कह रही, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा। सुनते हैं ये सुंदर गीत।
1: बांसुरिया फिर से बजाओ।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत ताज फिल्म से अभी आपने सुना। 1956 रिलीज ये फिल्म हेमंत कुमार का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। मित्रों, प्रकृति हमें बहुत सारे संदेश देती है। ये नदियाँ, ये समंदर, पहाड़, झरने, हरियाली, बाग बहार, पत्ते, सभी कुछ न कुछ संदेश लिए हैं। संदेश जीवन को जीवंत रखने का, जीवन को अच्छे से जीने का और दूसरों को भी अच्छे से जीने देने का संदेश।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत लाजवंती फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। मित्रों, प्राकृतिक नजारे हम सभी को भाते हैं। ये नजारे हम दूर पास इसके लिए पर्यटन भी करते हैं, इन नजारों को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए। और इन नजारों में ऊंचाई से बहता झरना हम सभी को अपनी फुहारों से भिगोता है और जीवन का संदेश भी देता है।

आदमी और इंसान, इस फिल्म से अभी आपने ये तराना सुना। 1970 रिलीज ये फिल्म आशा भोसले, महेंद्र कपूर की आवाजें थी, रवि का संगीत, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना एक ही रास्ता फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में। हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। कार्यक्रम में एक और गीत, साथियों भोर सुहानी हुई, पंछी पक्षी सभी जागे, इंसान भी चले अपनी अपनी राह पे अपने अपने कार्य की ओर, उन्हीं में से एक ये भी।

काले रंग। मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना घर की लाज फिल्म से। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। रवि का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी रचना के साथ आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई वर्ष 2026। सवेरे के 5:53 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारी दिए देते हैं। प्रातः 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 पर श्रोता साथी सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का भाग 64। संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे 6:55 पर। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे 7:05 पर। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा गोल्ड सुप्रभात। प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम आज सवेरे।

अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे 8:15 पर। प्रातः 8:30 पर सुनेगा उर्दू में समाचार। म्यूजिकल दिल लगी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। फिर से समाचारों का वक्त रहेगा, हिंदी में समाचार 9:00 और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। म्यूजिकल दिल लगी, इस कार्यक्रम का प्रसारण जारी होगा 9:10 पर। हिंदी में समाचार श्रोता साथी सुन सकते हैं प्रातः 10:00, अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा 10:05 पर। कार्यक्रम विश्व दर्पण 10:10 पर। वर्ल्ड न्यूज का समय रहेगा 10:20 पर। दिल का मेल बॉक्स 10:30 पर। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में कुछ जानकारी।

0: भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arkel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities to the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of the people. Earlier, the Prime Minister's aircraft was escorted by Swedish Air Force jets as it entered the European country's airspace. He was given a warm welcome at the airport by his Swedish counterpart in a special gesture. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Sadishan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. The Chief Minister designated yesterday evening unveiled a 21-member UDF cabinet ahead of today's swearing-in ceremony. Of the 21st ministers, 14, including Sadishan himself, are first-timers. Announcing the cabinet after submitting the list of ministers to Governor Rajendra Arlekar, Mr. Sadishan said the entire UDF ministry will be sworn in together. Congress secured 11 ministerial berths besides the chief minister's post. Mr. Sadishan also announced the Thiruvanchur Radhakrishnan will be the speaker and Shanimol Usman will be the deputy speaker. India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said that his year's theme, Reshaping Global Health, A Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Earlier in another match, the Delhi Royal Challengers Bengaluru defeated Punjab Kings by 23 runs in Dharamshala. In today's fixture, Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad will clash at M.A. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

जब तुम्हारा मन सच्चे स्नेह से भरा हो तो तुम्हारी मौन उपस्थिति भी संसार में करुणा और अपनापन बिखेर देती है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

भगवान बुद्ध के अनुसार मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: छह 6:33 अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। संत तुलसीदास ने कहा है कि जो दूसरों की बुराई करके खुद का सम्मान चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। इनके मुंह पर ऐसी कालिख पुत जाती है जो कभी मिटती नहीं।

परमहंस योगानंद ने कहा है कि सत्यवादी बनने की अभिलाषा में अपने सब रहस्यों का प्रचार न करें। यदि आप विवेकहीन मनुष्य को अपनी सब दुर्बलताओं के विषय में बता देंगे तो भविष्य में जब वे आपको हानि पहुंचाना चाहेंगे तब आपका मजाक उड़ाकर अच्छा आनंद लूटेंगे। इस तरीके से बोलिए एवं कार्य कीजिए कि उससे आपको और दूसरों को स्थायी आनंद मिले।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिना

0: हाँ, असाधारण योगदान आये, दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तान्तर्गतम् उभौ नेतारो भारत स्वीडन सम्बन्धानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार, निवेश, प्रविधि, नवाचार, हरित परिवर्तनम्, अन्तरिक्ष रक्षा, अनुसन्धानम् समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय सम्बोधने श्रीमोदी आतंकवादम् आलोचयन् नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्रीमोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन अभियानं, स्वच्छोर्जा, अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्रीमोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर

ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरूद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब आप नेक नियत के साथ काम करते हैं तो आपको अपने अंदर खुशी की एक नदी बहती हुई महसूस होगी। आज की सुबह एक और अवसर के साथ आई है। गोल्ड से प्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। 7:11 और 16 सेकंड। सुनते हैं लता मंगेशकर जी को उपकार फिल्म में।

अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन भर तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। सूर्योदय हुआ सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:06। आइए अब सुनते हैं इश्क पर जोर नहीं फिल्म से लता जी और रफी साहब को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आज 18 मई है और आज ही के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संरक्षण और संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1977 से शुरू होकर ये दिवस कला और इतिहास के संरक्षण में म्यूजियम की भूमिका को रेखांकित करता है। आइए अब सुनते हैं अप्रैल फूल फिल्म से लता मंगेशकर को।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
1: मैं बजाऊं तो मैं गाना गाऊं? अरे धत, मुझे गाना कहाँ आता है?
0: कला और जीवन दोनों में तपस्या और अभ्यास का बहुत महत्व है। शुरुआत में कोई भी

0: सवेरे लेकर मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
1: हेलो मनोज एंड अ जॉयफुली ब्राइट मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वेर इन वी ब्रिंग इन मोटिवेटिंग वाइब्स टू गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज 18th of May 2026। लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु तथा मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
1: Prime Minister Narendra Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission during an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg. Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them.
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं।
1: India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly. The six-day event will begin today in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges.
0: पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। रेलवे ने बताया कि समिति को निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। समिति घटना के कारण उपकरणों, तकनीकी पहलुओं

0: और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
1: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge.
0: चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई।
1: India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Keralam on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of June 1st. Our correspondent reports that conditions are favourable for the southwest monsoon to advance into more parts of the Southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
0: अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जलभराव, खराब सड़कों, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नागरिकों को एक अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के व्यापक कार्य तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण और हरित विकास शामिल है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वादा कर ये रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
1: एंड फ्रॉम दिल्ली वी मूव ऑन टू चेन्नई मेट्रो न्यूज। मनोज
0: जी,
1: In Chennai, libraries across the city have different sessions apart from reading activity. The sessions are part of the Directorate of Public Libraries summer outreach program aimed at keeping children engaged through activities that do not involve screen time and sparking an interest in libraries. The district library officer, M. Kavita, said that the programs are being held at 18 full-time libraries in the city. Libraries decide the schedule and activities for the day and coordinate with school head and local residents to ensure participation. All activities are being held in coordination with the readers' circles, which also contribute financially. The government has been providing up to 5,000 rupees per library for refreshments for the students. What a wonderful initiative taken by Chennai for libraries.
0: अब मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजना में तैनात की जाने वाली सुरंग खोदने वाली मशीन TBM का कटर हेड मुंबई के विक्रोली शाफ्ट में सफलतापूर्वक उतारा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इस उपलब्धि को देश की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया है। 350 टन वजनी और 13.6 मीटर व्यास वाले इस कटर हेड में 84 कटर डिस्क, 124 स्क्रैपर और 16 बकेट लिप्स लगे हैं। ये मशीन सुरंग खोदने के दौरान चट्टानों की खुदाई करने और मलबे को कुशलतापूर्वक हटाने के लिए डिजाइन की गई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिल फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है, जिसमें ठाणे क्रीक के नीचे भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी समुद्री रेल सुरंग भी शामिल है। सुरंग की कुल लंबाई में से 5 किलोमीटर की खुदाई पहले ही न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके की जा चुकी है, जबकि शेष 16 किलोमीटर की खुदाई टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग करके की जाएगी। मुंबई की एक और खबर, पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि पालघर जिले में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके जिला परिषद की नौकरी हासिल करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने अगस्त 2023 के सीधे भर्ती विज्ञापन के तहत ग्रुप सी प्रयोगशाला तकनीशियन पद के लिए आवेदन किया था और धुले के एक सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किया गया कथित विकलांगता प्रमाण पत्र जमा किया था। पुलिस के अनुसार उसने दिव्यांग श्रेणी में मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। धुले स्थित श्री भाऊ साहेब हीरे सरकारी मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के डीन के प्रारंभिक सत्यापन पत्र के आधार पर उसे अक्टूबर 2024 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया और चिंचानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात किया गया। हालांकि दिसंबर 2024 में अस्पताल ने एक पत्र जारी कर कहा कि प्रमाण पत्र आधिकारिक मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित नहीं हुआ था, जिसके बाद पालघर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पिछले साल 10 जून को उसकी सेवा समाप्त कर दी। स्वास्थ्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोनिका द्वारकानाथ राउत की शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और महिला को 12 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
1: And now, dear listeners, it's time for news from Bengaluru. The Minister for Railways, Ashwini Vaishnav, virtually flagged off the new SMVT Bengaluru Lokmanya Tilak Terminus bi-weekly express train yesterday. Addressing the event organized in Bengaluru, he announced the Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai soon. He suggested a rail-based mass transit system to solve the congestion and mobility challenges in Bengaluru. The Railway Minister noted that the suburban rail network approved by the central government for Bengaluru will integrate the metro system, airport, major railway stations and key IT hubs including Electronic City, Hebbal and Whitefield, which will be a game changer for Bengaluru's transportation ecosystem. Union Minister of State for Railways V. Somanna said that 12 pairs of Vande Bharat trains operate in Karnataka, covering 14 districts. That's good news for Bengaluru.
0: जी जी जी। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक और मंत्रिमंडल बैठक आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में होने वाली दूसरी मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव, गृह सचिव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय सूत्रों के अनुसार आरजी कर मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध, संस्थागत भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन और लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, वर्तमान सचिव, मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ बंदी और चौकियों के निर्माण के लिए BSF को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने के पूर्व निर्णय की समीक्षा की जाएगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री कोलकाता के अलीपुर स्थित धानोधानो सभागार में इस वर्ष की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, CBSE और ICSE परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: And now we move on to Hyderabad. Students from centers of excellence operating under Telangana Social Welfare Residential Educational Institution Society have achieved top ranks in the Telangana Engineering, Agriculture and Pharmacy Common Entrance Test 2026, according to a release yesterday. On this occasion, the Minister for SC/ST Welfare, Adluri Lakshman Kumar,

0: expressed his happiness and said that these results are proof of the exceptional talent that students from poor, Dalit, tribal and backward classes possess.
1: अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज बादल छाए रहने और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
0: श्योर। Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is also expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover between minimum of 29 degree and a maximum of 41 degree Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: Yes, Manoj, and today is International Museum Day, which is celebrated every year on 18th May across the world. The day was established in 1977 by the International Council of Museums, ICOM, to spread awareness about the importance of museums in society. Museums are not only places where ancient objects are stored, but they are also centers of learning, culture, history and research. And Manoj, museums are where history comes alive and curiosity grows. And on International Museum Day, let's just dodge the heat and visit a museum for fascinating stories that exist over there.
1: 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गाजा पट्टी क्षेत्र से अंतिम इसराइली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही क्षेत्र पर फलिस्तीनी स्वायत्त शासी शासन पूर्णता लागू हुआ।
0: In 1792, the New York Stock Exchange was founded when 24 brokers signed the Buttonwood Agreement on Wall Street. In 1804, Napoleon Bonaparte was proclaimed Emperor of the French. In 1875, the World Meteorological Organization traces its roots to the founding of the International Meteorological Organization.
1: 2006 mein आज ही के दिन नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया। 2007 में आज ही के दिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव को कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ाया गया।
0: In 1920, first Vatican canonization ceremony of Joan of Arc officially declared Joan of Arc a saint. In 1940, during World War II, Germany launched its assault on Belgium and the Netherlands, escalating the Western Front. In 1954, the U.S. Supreme Court delivered its landmark decision in Brown v. Board of Education, ruling racial segregation in public schools unconstitutional. In 1969, Apollo 10 mission launched as a rehearsal mission before the first moon landing. In 1973, the U.S. Senate began the televised Watergate hearings exposing major political corruption. And in 1974, Smiling Buddha marked India's first successful nuclear weapon test in Rajasthan.
1: 2008 में आज ही के दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। आज ही के दिन 2008 में भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
0: वी स्टार्ट विद गुस्ताव महलर, who was an Austro-Bohemian romantic composer and one of the leading conductors of his generation. He was a composer. He acted as a bridge between the 19th century Austro-German tradition and the modernism of the early 20th century. After 1945, his compositions were rediscovered by a new generation of listeners. Mahler then became one of the most frequently performed and recorded composers, a position he has sustained into the 21st century. In 2016, a BBC Music magazine survey of 151 conductors ranked three of his symphonies in the top 10 symphonies of all time. Here are some soul-stirring notes from Gustav Mahler's Symphony 2 in C minor.

0: आज पुण्यतिथि है मुकुंद दास की। उनका जन्म 22 फरवरी 1878 को ढाका, बंगाल में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे। उन्होंने ग्रामीण स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल के प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ बरिसाल टाउन हॉल में एक प्रेरक भाषण दिया था। संदेश को दूर दूर तक फैलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कामना की कि नाटकों के माध्यम से नेताओं के संदेश को गांवों तक पहुंचाया जा सके। तब मुकुंद दास अश्विनी कुमार दत्त के भाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने महान देशभक्ति की इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। 3 महीने के भीतर मुकुंद दास ने अपनी उत्कृष्ट कृति मातृ पूजा की रचना की। उनके नाटक का प्राथमिक विषय देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य भारत माता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराना था।
1: Today we remember Pope John Paul II, who was born on 18th May 1920. Pope John Paul was head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City State from 1978 to 2005. He significantly improved the Catholic Church's relations with Judaism, Islam and the Eastern Orthodox Church. He upheld the Church's teachings on such matters as the right to life, artificial contraception, the ordination of women and a celibate clergy. He was one of the most traveled world leaders in history, visiting 129 countries during his pontificate.
0: आज पुण्यतिथि है पंचानन माहेश्वरी की। उनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे। भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से उन्होंने एक नई शाखा का विकास किया, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने पंचानन माहेश्वरी को अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया।
1: George Strait is an American country music singer, songwriter, actor and music producer. George Strait is known as the King of Country and is considered one of the most influential popular recording artists of all time. He is known for his neo-traditionalist country style, cowboy look and being one of the first and main country artists to bring country music back to its roots and away from the pop country era in the 1980s. During the 1980s, 7 of his albums reached number 1 on the country charts. In the 2000s, Strait was named Artist of the Decade by the Academy of Country Music. He was elected into Country Music Hall of Fame and won his first Grammy Award for the album Troubadour. Let's saddle up and ride into the week with this song by George Strait.

आज पुण्यतिथि है रीमा लागू की। उनका जन्म 3 फरवरी 1958 को हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री थी। उन्हें मुख्यतः फिल्मों में मां की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की मित्र माँ हो या

वास्तव की कठोर माँ या फिर ये दिल्लगी की मालिकाना माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने माँ का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में माँ की भूमिका निभाई। टीवी सीरियल तूतू मैं में वेसास के किरदार में थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया था। आइए नजर डालते हैं उनके अभिनय पर।

0: इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास खलास खलास खलास।
1: शांता,
2: मैंने मारा नहीं उसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। सच में मैंने नहीं मारा उसको, मैंने नहीं मारा उसको। वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई। इसको
3: आज जयंती है नरेश मित्रों की। उनका जन्म 18 मई 1888 को ब्रिटिश भारत के त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1922 में मिनर्वा थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1923 में नरेश मित्रों कोलकाता के स्टार थिएटर में शामिल हुए और कई नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने उत्तम कुमार अभिनीत कुछ फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे बऊ ठाकुरानीर हाट, अन्नपूर्णार मंदिर। नरेश मित्रों बंगाल के लोक नाट्य यात्रा से भी जुड़े थे। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म बऊ ठाकुरानीर हाट रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: Omar Khayyam was a Persian mathematician, astronomer, and poet. As a mathematician, he is most notable for his work on the classification and solution of cubic equations, where he provided geometric solutions by the intersection of conics. As an astronomer, he designed the Jalali calendar, a solar calendar with a very precise 33-year intercalation cycle. From the famous Rubaiyat quatrains to profound insights on life, love, and spirituality, Khayyam's poetry became widely known to the English reading world. Khayyam's words that are soothing, thoughtful, and timeless.
1: और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की. भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया. केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना. और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है. श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री

0: उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेता

0: नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स विद स्वीडिश काउंटर पार्ट उल्फ क्रिस्टेशन इन गोथेनबर्ग लास्ट नाइट. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honor, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional

0: ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अजम का यादा है। गोतनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमानिगार से।
3: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वुजराय आला, सुबुकदोश वजीर आला पी नराई विजयन और बीजेपी के रियासती सदर राजीव

0: चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज्रायाला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहम्मुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने वजीर आजम के नीदरलैंड दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
1: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष

होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माता जी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोतेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोतेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में स्वीडिश कंपनियों से भारत में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने स्वीडन की नवाचार और स्थिरता की क्षमताओं को भारत के विशाल प्रतिभा और विकास की गति के साथ जोड़ने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण

0: में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। भारत ने संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव समाप्त करने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के एक अभिभावक पर प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने कल इस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1982 में हुई नई दिल्ली में हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बाद भारत ने दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a 2-day visit to Sweden. Mr. Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi. Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. Prime Minister Narendra Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, he made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors, highlighting India's rapid economic transformation. Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
3: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन AI enabled networks।

0: नीतु आ गई है AIRFM गोल्ड आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ नीतु। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। वहीं वो लोग जिन्हें बहुत कुछ आता है पर सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी जो है ना, वो उन्हें कहीं रोक के रखती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनमें क्या हुनर है और वो अपने उस हुनर को खुल कर इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसे ही बनना चाहिए, नहीं?
1: ओ,

आप जो भी ढूंढते हैं ना वो सब हम आपकी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आप रेडियो को पसंद भी करते हैं, और पसंद करने का ही ये नतीजा है कि हम और आपका साथ जो है अब 90 साल पूरे करने जा रहा है। 1937 में जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन काम करता था। 1946 में AIR डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आर्ट्स का एक विभाग बना जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया। 1997 में प्रसार भारती अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म को कब और कहां लॉन्च किया गया? यही है हमारा आज का सवाल, जिसका जवाब आप हमें भेजेंगे ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या आप जानते हैं कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को कब और कहां लॉन्च किया गया? बस जल्दी से अपने जवाब भेज दीजिए, और जो भी हमारे लिसनर्स हमें जवाब भेजेंगे उनमें से किसी एक को मौका मिलेगा हमसे बात करने का, हमारे साथ जुड़ने का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। और दिल लगी की बात अगर हम करें तो हम ना अपने साथ बहुत बहुत सारी दिल लगियां करते हैं। हमें जरा सी दूर भी जाना हो ना तो कई बार लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही दुनिया में अगर कोई पिता पुत्र साइकिल से दुनिया घूम आए तो वाह क्या ही बात है। उन्होंने क्या किया कि 400 दिनों में 31 देशों की यात्रा साइकिल से पूरी की और इस दौरान 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। दुनिया का सबसे तेज पिता पुत्र साइकिल का सफर, सबसे लंबी पिता पुत्र साइकिल यात्रा और सबसे ज्यादा देशों में साइकिल चलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आप और हम रिकॉर्ड ना सही, साइकिल तो चला ही सकते हैं, पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, पैरों की भी अच्छी खासी कसरत हो जाएगी और पैसे तो बचेंगे ही, यानी कि एक पंथ 3 काज होंगे, फायदा ही फायदा है। आप

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कागज़

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमित लोग तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही वैज्ञानिक शोधकर्ता भी लगातार प्रयासरत हैं ताकि इस गंभीर बीमारी से बचने के उपाय ढूंढे जा सके। एचआईवी एड्स के खिलाफ

निकाल के लाते हैं तो वो अच्छा है, और अगर कुछ नेगेटिव होता है चला जाता है तो वो वाकई बुरा है। अब गर्मी का मौसम है, आपको घूमना पसंद है, लेकिन बाहर घूमना मतलब कि पसीने के चिपचिप, बदबू और सारी आउटिंग बेमज़ा। ऐसे में घूमना हो तो म्यूजियम से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, जहां पर हम इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ी ढेरों जानकारियां पाते हैं, कभी चित्रों के माध्यम से, कभी डॉक्यूमेंट्स के जरिए, और कभी वहां रखे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स के जरिए। आजकल तो एवीज भी दिखाई जाती हैं। इन्हीं संग्रहालयों के नाम है आज का दिन, जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और मुझे तो निजी तौर पर म्यूजियम्स बहुत पसंद हैं। अब आपको पसंद हैं तो फिर आज किसी म्यूजियम की सैर कर आइए।

हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में ना तरक्की हो, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, और हम सब मिलजुल कर जब आगे बढ़ते हैं तो विकास होता है। और इसी तरह की योजनाएं हमारे आसपास बहुत हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये ऐसी ही एक योजना है जिसका उद्देश्य देश के जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

इस पहल के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार को मजबूत किया जाता है ताकि जनजातीय समुदायों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। ये जो अभियान है ये आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें अब आने वाला है एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: जागने से लेकर जरूरी टास्क याद रखने तक के लिए अलार्म आप लगाते हैं अपने फोन में, म्यूजिक सुनने से लेकर मूवी या सीरीज देखने के लिए भी फोन का इस्तेमाल होता है, ईमेल से लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और सोशल मीडिया पर चिल करने के साथ ही फोटो खींचने, वीडियो शूट करने के लिए भी हम सब फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। सफर में हो या घर पर खाना खाते हुए भी फोन साथ में होता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाथरूम में भी फोन ले जाते हैं। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि आपका फोन किस तरह के जर्म्स का घर बन चुका होगा? कभी अपने फोन को बाहरी तौर पर साफ करते हैं आप? नहीं करते हैं तो प्लीज आज ही किसी ऐसे क्लिंजर से फोन को साफ करें जो खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए बना है। कोविड में हम सब बहुत ध्यान रखते थे इन बातों का, मगर अब भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है।
1: हाँ, लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
2: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: मुझे भी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि आज हमने सवाल पूछा था प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म को कब और कहां लॉन्च किया गया, और इसके बहुत सारे जवाब हम तक पहुंचे हैं। नवीन भाटिया, आशीष गायकर, प्रकाश गोगिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, अरुण अरोड़ा और एसपी गोयल, वरुण गुप्ता, पंकज मोहर, मनीषा साखरदांडे, मनोहर लाल गांधी, हेमंत साखरदांडे, किशन वंजानी, मधु किरण, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, इन सब ने सही जवाब हम तक पहुंचाया है। और एक और सही जवाब आया है जिनसे हम अब ऑन एयर बात करने वाले हैं, वो है भास्कर नंद पांडे जी। भास्कर जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो भास्कर जी, भास्कर जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो
1: जी,
0: भास्कर जी कहाँ गायब हो गए आप? जी जी हाँ, तो अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
1: जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
0: नमस्कार भास्कर जी, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार,
0: ठीक हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि आज हमने सवाल पूछा था प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म को कब और कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब आपने हमें मेल पर तो भेजा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी हमें बता दें उसका सही जवाब।
1: जी जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म मैडम नवंबर 20 2024 को 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था, पणजी में, वहां पर लॉन्च किया गया था।
0: जी जी, आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं तो आपका
1: जी, हाँ
0: जी जी, तो आप ये बताइए आकाशवाणी से आप कब से जुड़े हुए हैं? आपका जवाब बिल्कुल सही है, 20 नवंबर 2024 को गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं, ये अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
1: जी मैं कक्षा 5 में पढ़ता था 79 में, तब से
0: अरे वाह
1: मैं जुड़ा हूँ आकाशवाणी से।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी प्रिंसिपल हूँ डाइट पिथौरागढ़ में।
0: अरे वाह, तो आप तो बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आप
1: जी, अपना हमारे वहाँ टीचर तैयार होते हैं फ्यूचर के।
0: जी जी, तो अपने आपने जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, आकाशवाणी से जुड़ा कोई अनुभव आप हमसे बांटना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी से पहली बार जो मैं कमेंट्री के माध्यम से जुड़ा था, तो तब वो ओवल टेस्ट में जब सुनील गावस्कर ने सेंचुरी मारी थी
0: जी,
1: बड़ा बहुत रोचक था और हमारे पूरा परिवार उसको सुन रहा था। उसके बाद फिर आकाशवाणी से जो नाता जोड़ा वो आज तक कायम है मेरा, और मैं सुबह दोपहर और शाम को रोज समाचार सुनता हूँ और अपने बच्चों को भी प्रेरित करता हूँ जो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं कि आपके पास ये न्यूज ऑन एआईआर या वेब प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सबसे विश्वसनीय माध्यम है, सबसे जिसको हम कह सकते हैं साफ और सुथरा माध्यम है
0: जी।
1: उसका प्रयोग सभी को करना चाहिए और निश्चित तौर पर आकाशवाणी बहुत अच्छा काम कर रही है।
0: अच्छा, तो आप गाने वाने भी सुनते हैं आकाशवाणी पर या सिर्फ न्यूज सुनते हैं? गानों का शौक है आपको?
1: जी, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और साथ ही साथ शाम को 9:30 बजे जो है जो विविध भारती पर छाया ये कार्यक्रम आता, वो दोनों मेरे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अगर आप गाने सुनते हैं तो आपकी पसंद का कोई गाना हम प्ले कर सकते हैं आज?
1: हाँ मैडम, हिमालय की गोद में पिक्चर का गाना है, चांसी में हुआ।
0: अरे वाह,
1: तो अगर इसको लगाते हैं बहुत अच्छा लगेगा।
0: या बिल्कुल, कोई याद जुड़ी है इस गाने के साथ आपकी?
1: जो मेरी शादी में ये गाना जो है पिक्चराइज किया गया मेरे पर।
0: अच्छा, ओके, तो आप इस गाने के हीरो हैं, इसीलिए आपको ये गाना पसंद है। चलिए ठीक है, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।

इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। आपसे मुलाकात होती है दिल का मेल बॉक्स में 10:30 बजे। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी

0: अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission during an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg. Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development in India.
2: Vodafone, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary Wes Sibbe-George said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent recent years. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इंकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर।

0: टुगेदर टूवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों में निरंतर आर्थिक सुधारों के कारण देश में हुए परिवर्तन की सराहना भी की है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का जिक्र किया।
3: Which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे पर वार्ता ठप होने के कारण ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है। उन्होंने ईरान से समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी, ईरान की मीडिया द्वारा अमेरिका की वार्ता फिर से शुरू करने की मुख्य शर्तें उजागर करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और केवल एक परमाणु संयंत्र को सक्रिय रखे। अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग को भी छोड़ना चाहता है और ये स्वीकार करना करना चाहता है कि ईरान की अधिकांश जब्त संपत्तियां अवरुद्ध रहेंगी। अमेरिका ये भी चाहता है कि क्षेत्रीय संघर्ष वार्ता पूरी होने के बाद ही समाप्त हो। इस बीच ईरान ने इन शर्तों को खारिज कर दिया है और वार्ता फिर शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में विशेष रूप से लेबनान में सैन्य अभियान बंद होने चाहिए। प्रतिबंध

0: हटाए जाने चाहिए और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जानी चाहिए। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता की भी मांग की। विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोम में कल फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इंकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे। और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. US President Donald Trump issues fresh warning to Iran after Tehran rejects Washington's core conditions for resuming negotiations. New Delhi expresses deep concern over attack on UAE's Baraka nuclear facility. Health Minister Jagat Prakash Nadda to join global dialogue on shaping future of healthcare at 79th World Health Assembly in Geneva today. And in tennis, world number one Jannik Sinner wins Italian Open title, beating Norway's Casper Ruud in final match. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. Prime Minister Modi was also awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. Prime Minister Modi invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
3: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange jaisi companiyon ka Bharat mein vishal anubhav hai. Bharat 5G se 6G transition, AI-enabled

शुरू हो गया है दिल का मेल बॉक्स। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये जो पहला गाना है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, किशोर कुमार की आवाज़ में सिंपल सा म्यूज़िक, शांत सा माहौल, और फिल्म भी उतनी ही प्यारी। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इन सब ने सुनना चाहा है ये गाना फिल्म अमर प्रेम से।

कितना खूबसूरत गाना था ना। बिल्कुल, इतने खूबसूरत गाने हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक के बाद एक बस सुनते चले जाएं तो दिल ही नहीं भरता है। अगला गाना जो आ रहा है उसकी फरमाइश बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो fmgold@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी, आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। अगला गाना है अर्पण फिल्म से, प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की पसंद का। इनके अलावा शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, इसके अलावा श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, RSD अंसारी और आसमा खातून अंसारी, ये सब भी एक गाना सुनना चाहते हैं। तो आप सब की

ऐसा आप अपने सपनों के लिए भी बोलते हैं क्या? नहीं ना, जब जो चीज से अगर आपको प्यार है तो आप उसके पीछे हाथ धो के लग ही जाते हैं ना, और यही प्यार होता है, वो चाहे आपके अपने सपनों से हो, अपने लक्ष्यों से हो, किसी भी चीज से हो। और इस गाने की जो फरमाइश की थी वो चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, इन सब ने की थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं दिल का मेल बॉक्स में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इनकी फरमाइश पर ये गाना आपने सुना आकाशदीप फिल्म से। इनके अलावा कल्पना लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता भी ये गाना सुनना चाहते थे। अब जो गाना आ रहा है वो बहुत ही मशहूर फिल्म का गाना है, क्लासिक फिल्म है वक्त। इतने सारे कैरेक्टर उसमें हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, तो और उस फिल्म की कहानी भी ना बड़ी ही मज़ेदार है। आपने अगर नहीं देखी है ना तो बिल्कुल देखिएगा। धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा की फरमाइश पर वक्त फिल्म का ये गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, जो कि शर्मिला टैगोर और शशि कपूर पर पिक्चराइज्ड है, नाव के अंदर।

देखिए धारों में मझधार तो होगी ही होगी, वो कहते हैं ना कि जब ऊसल में मुंह सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, तो फिर यही इस गाने का जो लॉजिक है वो ये कहता है। अब इस प्रोग्राम का यानी दिल का मेल बॉक्स का आखिरी गाना सुनाने का समय हो गया है, तो आपको सुना देते हैं वो गाना नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की फरमाइश पर। साथ ही इस गाने को पसंद किया है सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना ने भी। तो आप सुनिए चोर मचाए शोर फिल्म का ये सुपरहिट सॉन्ग मैं चलती हूँ। आपसे मिलूंगी तस्वीर में, तो नीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
1: दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश

0: चिन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheesan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers, former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chinnathala, present KPCC President Sonny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P.K. Kunhalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Swearing-in ceremony of the 21-member ministry is continuing at Thiruvananthapuram.

शुरू हो गया है तस्वीर। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और आज हम जिस जगह की बात करेंगे ना, उसे एक जमाने में माचिस की डिब्बियों का शहर कहा जाता था और पेंशनर्स पैराडाइज भी, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी से रिटायर होने के बाद यहां बसना चाहते थे। आज इसे सिटी ऑफ गार्डन्स और सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जो कि वेल प्लान्ड है, सेक्टर्स में बटी है और बहुत साफ है। यहाँ की एक जगह का नाम जैसे ही मैं लूंगी ना, आप इस जगह को पहचान जाएंगे, रॉक गार्डन। जी हाँ, ये है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की मिलीजुली राजधानी और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इसी की बातें करेंगे आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर में।

हिमालय की शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा चंडीगढ़ बहुत पुराना शहर बिल्कुल नहीं है। पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो अपने पंजाब के लिए नई राजधानी की तलाश शुरू हुई और तब एक नए शहर की परिकल्पना की गई। योजना और डिजाइन का काम शुरू किया अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर ने, लेकिन जब उनके एक साथी की मौत हो गई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर इस काम को अंजाम दिया फ्रेंच आर्किटेक्ट कॉर्बुसियर ने। अक्टूबर 1953 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया। जब इस शहर को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था तो ऐसे कई अवशेष मिले जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा स्थलों की खुदाई में पाए गए अवशेषों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। इससे ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद यहां तक फैली हुई थी। फिलहाल तो यहां पंजाबी कल्चर फैला हुआ है और हमारे प्रोग्राम में भी पंजाबी सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला गाना नया दौर फिल्म से।

चंडीगढ़ का मतलब है चंडी का गढ़, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पास के गांव में माँ चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक पुराना किला, इन दोनों को मिलाकर बना चंडीगढ़। चंडी मंदिर के अलावा माता जयंती मंदिर, शीतला माता मंदिर, माता बसंती मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर मन्नी माजरा में है, मनसा देवी मंदिर। मन्नी माजरा में दो ऐतिहासिक मस्जिदें भी देखी जा सकती हैं। तो चंडीगढ़ जब जाएं तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और बातें हो रही हैं चंडीगढ़ की। ये नाम आते ही ना नेक चंद जी का बना हुआ रॉक गार्डन याद आ जाता है, जो उस समय अपनी तरह का अनूठा प्रयास था। आज तो आपको बहुत सारे ऐसे गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी हैं कई, मगर जब नेक चंद जी ने इसे बनाया था तो ये चंडीगढ़ की पहचान बन गया था। लंग्स ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जानी जाती है लेजर वैली, जो पार्कों और बागीचों की एक श्रृंखला है। सेक्टर 1 से शुरू होकर ये सेक्टर 53 पर खत्म होती है, जिसमें कुल 12 पार्क और उद्यान हैं। इनमें राजेंद्र पार्क, रोज गार्डन, टोपियारी पार्क, टेरेस गार्डन, फिटनेस ट्रेल्स, शांति कुंज, बोटानिकल गार्डन, हिबिस्कस गार्डन और स्मृति उपवन शामिल हैं। जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आप 1600 से ज्यादा किस्म के गुलाब के फूल देख सकते हैं। शांति कुंज में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की बड़ी मात्रा पाई जाती है। टेरेस्ड गार्डन में अपने म्यूजिकल फाउंटेन की वजह से मशहूर है, जो शाम के समय जगमगाता है और संगीत की धुन पर चलता है। इनके अलावा जैपनी

0: इस गार्डन गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस और गार्डन ऑफ पाम्स भी देखने लायक है।
1: तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: चंडीगढ़ में दो मशहूर झीलें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुखना और ढांसा। सुखना झील में कई तरह की बतख और गीज परमानेंटली देखी जा सकती हैं और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहां आकर डेरा डाल लेते हैं। सुखना झील से ही जुड़ा है सुखना वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर आपको बहुत सारे जीव जंतु पंछी देखने को मिल जाते हैं, जानवरों पंछियों और पेड़ पौधों और दूसरी कई वन पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए इसे 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 2006 में बना सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बहुत ही सुंदर है। यहां पर आप नीम पीपल शीशम जैसे पेड़ों के अलावा देख पाएंगे तरह तरह के पक्षी। वैसे अगर आपको तोते पसंद हैं तो आप तोता पक्षी अभयारण्य जा सकते हैं जिसे सिटी बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में रंग बिरंगे तोते हैं जो कहीं झुंड में बैठे हुए कहीं उड़ते हुए आपको दिख जाएंगे तो कहीं बतियाते हुए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 100 एकड़ के विशाल परिसर में देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। इस परिसर में पैलेस ऑफ असेंबली, सचिवालय भवन, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और एक झील के अलावा हैं 4 स्मारक। पंजाब विभाजन के शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक, प्रसिद्ध ओपन हैंड स्मारक, टावर ऑफ शैडोज और जियोमेट्रिक हिल। ओपन हैंड स्मारक शांति, एकता और खुलेपन का सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। टावर ऑफ शैडोज को सौर गति का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें टावर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पड़ने वाली छायाओं का उपयोग करके सूर्य के मार्ग का पता लगाया गया था। जियोमेट्रिक हिल को पास की विधानसभा की बिल्डिंग को छुपाने के लिए बनाया गया था और ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट से बना है। टीले के आकार के इस मॉन्यूमेंट के आसपास कुछ कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। तो जब भी आप चंडीगढ़ जाएं तो इस परिसर को जरूर देखें, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या नाम है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स।

0: फूटे या माथा,
1: अब चाहे कांटे मिले या कलियां,
0: अब चाहे लग जाए हर कड़ियां,
1: अब चाहे घर छूटे या सखियां,
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या पापा, यारा मैंने को
2: इसी तरह का जो मिजाज है ना वो आपको मिलेगा जब चंडीगढ़ में मेगा कार्निवल जब आयोजित होता है और आप वहां जाएंगे। तो ये होता है हर साल नवंबर के आखिर में और इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियों के साथ साथ बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मानसून में सुखना झील के आसपास आयोजित किया जाता है मैंगो फेस्टिवल, जहां आम की ढेरों वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी और आम तो ज्यादातर लोगों को पसंद आता ही है। इसके अलावा नवरात्रि, लोहड़ी, वसंत, बैसाखी, मतलब सभी त्योहार जो हैं वो बहुत धूमधाम से पंजाब में मनाए जाते हैं और ऐसा ही त्योहारों वाला मेले वाला फील लेकर आ रहा है ये अगला गाना पवित्र पापी फिल्म से।
1: लेते सैया ओढ़नी हो लेते सैया।

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

आ गया ना त्योहारों वाला फील भी आपको। शहरीकरण की चकाचौंध होते हुए भी ना चंडीगढ़ जो है वो संस्कृति से सभ्यता से भरपूर है, और इस तरह का फील ना आपको वहां मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हरियाली भी हर तरफ नजर आएगी, जंगल से घिरा है, बरगद नीलगिरी के पेड़ हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। और शायद यही वजह है कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, फिर भी यहाँ की आबो हवा साफ सुथरी है। हाँ, ट्रैफिक पिछले कुछ सालों के मुकाबले बढ़ा है, पर अभी भी मेट्रो सिटीज से बेहतर है। चंडीगढ़ में शॉपिंग करनी हो तो सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में कमर्शियल मार्केट्स हैं, जहां से आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं, फुलकारी आइटम्स, पंजाबी जूतियां शास्त्री मार्केट से खरीद सकते हैं। वैसे चंडीगढ़ ड्राई फ्रूट्स के लिए भी मशहूर है, और पंजाब में है तो हर तरह के पंजाबी फूड आइटम्स का स्वाद तो आप यहाँ ले ही सकते हैं। अभी तो आप आनंद उठाइए इसी तरह की छेड़छाड़ का।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और चंडीगढ़ की आज हमने बातें की हैं। और अब आपका दिल में अगर आ रहा है कि चंडीगढ़ जाना ही है तो फिर अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम सबसे बेस्ट है चंडीगढ़ घूमने के लिए। अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं यानी कि एरोप्लेन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, तो चंडीगढ़ में है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाना चाहें तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, केरल और चेन्नई से चंडीगढ़ तक सीधी रेल सेवा है। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से सड़क परिवहन निगम की बसें भी चलती हैं, तो आप चाहें तो लग्जरी बसों से भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं या फिर अपनी कार में, जैसा कि ज्यादातर दिल्ली वाले करते हैं, कार उठाई और किसी भी वीकेंड पर चंडीगढ़ पहुंच गए।

आप चाहें तो लंबी छुट्टियों में, चाहें तो वीकेंड पर जा सकते हैं। तो आज का चंडीगढ़ तक का सफर तस्वीर यहीं तक। अब नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मैं आज छोड़े जा रही हूँ, आप उसका आनंद उठाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolizing the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Kerala, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
3: Yana Vadaseri Damodara Menon Satheeshan Enmanyan Niyamam Vali Sthapithamaya Bharatathinte Bharanaghadanayodu Nirvyajamaya Vishwasthathayum.
2: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas LPG arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey

आंगन। घर सिर्फ दीवारों में नहीं बसता, वो बसता है उन आवाजों में जो सुबह चाय की भाप के साथ उठती हैं और शाम को थकी हुई मुस्कान बनकर लौटती हैं। घर वो है जहां बातें कभी पूरी नहीं होती और खामोशियां भी अपनी सी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर इन्हीं एहसासों, इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों और रिश्तों की गर्माहट को समेटे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। आइए इस आंगन में कुछ देर ठहरते हैं जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और हर बात दिल तक उतरती है।

फिल्म दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और इसी विशेष अवसर पर हम बात कर रहे हैं इस प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ी उन स्मृतियों, ध्वनियों और कहानियों की जिन्होंने पीढ़ियों तक श्रोताओं को और उनके जीवन को छुआ है। इस कड़ी में आज बात आकाशवाणी की उस संगीत धुन की जिसे सुनते ही बरबस एक आत्मीय एहसास मन में उतर आता है। कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे पीढ़ियों की स्मृतियों में बस जाती हैं। आकाशवाणी की संगीत धुन भी ऐसी ही एक धुन है जो आज भी सुनाई दे जाए तो बीते समय की सुबहें, रेडियो के आसपास बैठा परिवार और एक अलग सी आत्मीयता याद आ जाती है। सुबह के प्रसारण के आरंभ में बजने वाली यह धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आकाशवाणी की पहचान है। इस ऐतिहासिक धुन की रचना ऑस्ट्रियाई मूल के संगीतकार वॉल्टर कॉफमैन

सुनने की थी, जो 1930 के दशक में आकाशवाणी मुंबई केंद्र से जुड़े थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेरित इस धुन में राग शिवरंजनी, जी हाँ, राग शिवरंजनी पर आधारित है हमारी ये संकेत धुन, और इसे प्रसिद्ध वायलिन वादक महली मेहता ने इसको स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय बदला, तकनीक बदली, सुनने के माध्यम भी बदल गए, लेकिन आकाशवाणी की यह धुन आज भी वही अपनापन लिए हुए है जो कभी करोड़ों भारतीय घरों की सुबहों में गूंजा करती थी। वैसे भी अभी हम दोपहर में हमारे कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए हैं, लेकिन उस धुन को याद करते हुए हम सुबह को क्यों न याद करें, जब इस धुन की वजह से सभी की सुबह एकदम संगीतमय और एक अलग ही जिंदगी को एक अलग ही मंत्र देती हुई शुरू होती थी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: जी हाँ, आकाशवाणी के इन्हीं यादों को संजोए हमने आपके साथ बात की थी हमारी आकाशवाणी के संकेत धुन की। और देखिए ना, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमारा और आपका जो रिश्ता है वो किस तरह से कायम होता है, फिर भी बता देती हूँ। एक ईमेल है, जी हाँ, एक ईमेल आईडी है जो है fmgoldga@gmail.com। तो बस इसके जरिए आप पर हम जुड़ पाते हैं, आपकी बातें, आपकी राय, आपके मशवरे, आपकी बातें सब हम यहाँ पर शुमार कर पाते हैं। तो बस आपको और इंतज़ार मत करवाइए हमें और अपनी बातें हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। देखिए, इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर दिल्ली से। वो लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार, आकाशवाणी पे बात करके और उसकी धुन के बारे में बता के आपने बचपन की याद दिला दी, थैंक्स। जी हाँ, अब देखिए ना, गोल्ड हमारा जो FM गोल्ड है वो बना ही इसलिए है कि पुरानी सारी यादों को आपके साथ बांटता रहे, भले ही वो पुराने गाने हों और पुरानी बातें हों। लेकिन देखिए, इन दिनों तो हम आकाशवाणी के 90 सालों को यहाँ पर बहुत खूबसूरती से मना रहे हैं, तो आप भी सुनना न भूलिएगा मंगलवार और गुरुवार को हमारे ये जो विशेष कार्यक्रम है वो है ना, यादों के रंग जो है। तो बस हम बात कर रहे हैं किसकी, घर आंगन की, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत अलग सी एक योजना के बारे में। जी हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसा है कि माँ बनना किसी भी स्त्री के जीवन का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होता है ना? और ऐसे समय में सही पोषण, पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य देखभाल केवल माँ के लिए ही नहीं बल्कि शिशु के स्वस्थ भविष्य के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की। ये योजना वर्ष 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि गर्भावस्था के दौरान उन्हें बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। योजना के अंतर्गत ना जो महिलाएं हैं उनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है। और वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ना पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 की सहायता दी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 2.0 के अंतर्गत दूसरी संतान यदि बालिका हो तो ₹6,000 की सहायता का प्रावधान भी है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक सहयोग देना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और शिशु टीकाकरण के प्रति जागरूक करना भी है। कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ माँ केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, वह आने वाले समाज की नींव गढ़ती है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप सभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.wcd.gov.in या pmmvy.wcd.gov.in

www.sbs.com.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस योजना की जानकारी अपने आसपास जो भी गर्भवती स्त्री हो उस तक जरूर पहुंचाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: फिल्म नाखुदा में आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की।

0: 1-1-7-8-0-0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1-9-2-2 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ, कार्यक्रम है घर आंगन और आप सुन रहे हैं इसे हमारे साथ कहाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपकी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा कार्यक्रम करने का जो मन है वो और ज्यादा लगने लगता है। तो हमारे साथ अभी कौन जुड़े हैं? हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, उनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, और ये हमें नमस्ते, अच्छा, सादर प्रणाम करते हैं। सर, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते यहाँ से। और आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है, मन भावन गीत है, प्रस्तुति इन्हें अच्छी लग रही है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं, हम भी आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ उग्रसेन यादव जी जुड़े हैं नई दिल्ली से। लिखते हैं, सोनाली जी आपको दिल से नमस्कार। आकाशवाणी ने बहुत कुछ हमें यानी देश को दिया है, ये देश की ऐसी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को याद दिलाता जाएगा कि बहुत पहले और अब में क्या अंतर है। वह क्या बात है, सही बात है सर, और ऐसी धरोहरों का सम्मान करना तो बनता है ना। और देखिए, 90 साल पूरे कर चुकी है आकाशवाणी, कर रही है इस साल, और बहुत सारे हम लोग विशेष कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ी रहा कीजिए, कहाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो अब हम बात करते हैं किस बारे में, जी हाँ, अब हम बात करते हैं गर्मी की। और गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, पानी। अब क्या होता है कि गर्मी का मौसम आते ही पानी का जो महत्व है वो और ज्यादा महसूस होने लग जाता है। कहीं जलस्तर घटने की खबरें सुनाई देती हैं तो कहीं लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। ऐसे समय में जल संरक्षण केवल जागरूकता का विषय नहीं बनता बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। अक्सर हमें लगता है कि पानी बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी, जबकि सच ये है कि घर की छोटी छोटी आदतों से भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कैसे? जी हाँ, ऐसे। ब्रश या शेव करते समय नल को खुला न छोड़ें। सब्जियां धोने या आरओ के जो अत्यधिक जो एक अलग सा पानी उसमें से गिरता रहता है ना, उसको आप इकट्ठा करके पौधों में डाल सकते हैं। सब्जियों का पानी भी आप अपने बगीचों में डाल सकते हैं। फिर बाल्टी से स्नान को आप प्राथमिकता दें, क्योंकि शावर में ना बहुत ज़्यादा पानी व्यर्थ होता है। फिर वर्षा का जो जल संचयन है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। फिर बच्चों को बचपन से ही पानी का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पानी को सुविधा नहीं बल्कि अमूल्य संसाधन समझें, क्योंकि जो पानी आज सहज उपलब्ध है ना, वही आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। और विशेषज्ञों के अनुसार ना, यदि हर घर थोड़ी सी सावधानी बरते तो प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। और कहा भी जाता है ना दोस्तों कि जल बचाना केवल प्रकृति को बचाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना भी है।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज़ में ये गाना। और हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था ना, बच्चों को भी जल संरक्षण ज़रूर बताएं। तो हम बच्चों की बात करते हैं अगर, तो आजकल आपने एक चीज़ बहुत महसूस की होगी कि आज का जो बचपन है वो पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुका है। कभी बच्चों की दुनिया खेल के मैदान, कहानियों और दोस्तों के साथ बीतती थी, लेकिन अब मोबाइल और स्क्रीन उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, खेल और सामाजिक माध्यमों के कारण ना बच्चों का जो स्क्रीन समय है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम लंबे समय तक, अगर आप भी मानते हैं इस बात को कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से ना बच्चों की आंखों, नींद और उनकी जो कंसंट्रेशन है यानी एकाग्रता पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और इसका बहुत दुष्परिणाम भी होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो बच्चे तकनीक से जुड़े रहें, देखिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तकनीक से तो जुड़े रहना है लेकिन ना एक संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम, जी हाँ हम अभिभावक, कुछ छोटी बातों का ध्यान हमेशा रख सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए ना हमेशा हर दिन ना एक सीमित स्क्रीन का समय तय कर दीजिए और उन्हें खाना खाने के समय और सोने के समय मोबाइल से दूर रखें। और ये हमारी ही जिम्मेदारी है ये सारी। और ना भोजन, बच्चों को ना जब खुले मैदान में, उन्हें हमेशा ये प्रेरित करें कि वो खुले मैदान में खेलने जाएं, पुस्तकें पढ़ें और बहुत सारी ना रचनात्मक गतिविधियों को भी वो करने की कोशिश करें, उनको उसमें लगातार जोड़ कर रखिए। और सबसे ज़रूरी, परिवार के साथ कुछ समय उनके साथ आप भी बिना मोबाइल के बिताएं, क्योंकि देखिए बच्चा वही सीखेगा जो हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर हम मोबाइल से दूरी रखेंगे तो

हमारा बच्चा भी सीखेगा इस बात को। और फिर ना कहते भी हैं कि आप पहले उस चीज को खुद करें, फिर आप किसी और को उसके बारे में प्रवचन दें। जी हाँ, है ना। तो आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि आप अपने मोबाइल से दूर रहिए। और क्योंकि बचपन केवल उम्र का पड़ाव नहीं है, और बल्कि ये वो समय है जहाँ जीवन की सबसे सुंदर यादें बनती हैं, और उनकी यादों में माँ, पिता, घर के अन्य सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, थोड़ा सा खेल कूद, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत सारा खेल कूद होना चाहिए। और उनको आप लेकर जाइए बाहर, कभी कुछ खेलिए, कभी कुछ खेलिए, क्यों ना आप उनके साथ में छुपा छुपी खेलिए, है ना। ये भी बहुत अच्छा जरिया है, बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ा रहता है, दोस्तों के साथ जुड़ा रहता है।

फिल्म ड्रीम गर्ल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भूमिका आजकल लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बहुत सीमित थी। ऐसे दौर में डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय ने अपने साहस, मेहनत और समर्पण में एक नई मिसाल कायम की। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल बनी। उन्होंने न केवल चिकित्सा सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के लिए नए रास्ते भी खोले। वे भारतीय वायुसेना में एविएशन मेडिसिन की विशेषज्ञ रही और कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय की यात्रा ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और लगन के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। उनकी कहानी केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का संदेश है ना? और बस हम तो यही चाहेंगे कि हम में से हर महिला बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, आसमान छुए और उसके पैर कभी जमीन पर ना टिके।

फिल्म घर में मैं आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमने आज के कार्यक्रम में हर पहलू की बात कर ली जीवन की, है ना, और चलते चलते आज हम बात करते हैं फैशन की। देखिए फैशन केवल बदलते परिधानों का नाम नहीं होता बल्कि समाज संस्कृति और समाज की बदलती सोच का भी एक दर्पण होता है। भारतीय फैशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है। एक समय था जब भारत में हथकरघा से बने वस्त्र ही पहचाने जाते थे, है ना, बनारसी हो गया, चंदेरी, महेश्वरी, कांचीवरम और भागलपुरी जैसे वस्त्र केवल कपड़े नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थे। अलग अलग प्रदेशों की बुनाई, रंग और डिजाइन अपनी अपनी कहानी कहते थे। समय के साथ फैशन की दुनिया बदलती गई। फिल्मों, दूरदर्शन, फैशन डिजाइनरों और वैश्विक प्रभावों ने भारतीय पहनावे को नया रूप दिया। साड़ियों के साथ फ्यूजन शैली, पारंपरिक कपड़ों में आधुनिक डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय परिधानों की उपस्थिति ने फैशन को एक नई पहचान दी। आज उच्च फैशन का दौर है जहाँ विशेष डिजाइन, हथकला और व्यक्तिगत शैली को महत्व दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक फैशन की चमक के बीच भी हथकरघा और हैंडलूम की लोकप्रियता फिर भी बढ़ ही रही है। लोग अब ऐसे परिधान पसंद करते हैं जो सुंदर होने के साथ साथ आरामदायक, टिकाऊ और अपनी जड़ों से जुड़े हों। भारतीय फैशन की यह यात्रा हथकरघा की सादगी से लेकर उच्च फैशन की भव्यता तक जरूर पहुंची है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी भारतीय संस्कृति और उसके रंगों और विविधता में ही बसती है।

दोस्तों, अब घड़ी इजाजत नहीं देती कि आपके साथ और बातें की जाए, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026-2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defence of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
3: Yana Vadacheri Damodara Menon Satheeshan enna njan niyamam vali sthapithamaya Bharatathinte bharanaghadanayodu nirvyajamaya vishwasthathayum.
2: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheeshan on taking oath as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Kerala government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, फिल्में देखना जितना खूबसूरत एहसास है, उतना ही मुश्किल काम है फिल्म बनाना। सही कहानी, अच्छे कलाकार और संगीत से लेकर फिल्म के पूरे होने तक और थिएटर पहुंचने तक एक फिल्मकार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। वो पर्दे पर दिखाई भले ही ना देते हों, लेकिन उनकी मेहनत समझ में आती है। तो आज एक ऐसे ही जाने माने फिल्मकार की बातें होंगी जिनकी फिल्मों ने हमारा दिल जीता और आज तक उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। जरा अंदाजा लगाइए किन की बात कर रही हूं मैं।

और मैंने कहा था ना कि आज कुछ अलग तरह के गाने आप सुनने वाले हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे फिल्मकार की जिनकी फिल्में बहुत ही अलग तरह की और बहुत ही खूबसूरत रही हैं। ये गाना आपने सुना सनम बेवफा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, उनके साथ ही भी उनके साथ गा रहे थे। और दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर थे सावन कुमार टांक। जी हाँ, वो फिल्मकार जिनकी आज हम बातें करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, सावन कुमार हिंदी फिल्मों के एक जाने माने फिल्मकार थे। शायद आप जानते होंगे कि सावन कुमार ने ही संजीव कुमार को उनका नाम दिया था। जी हाँ, पहले संजीव को हरी भाई जरीवाला के नाम से जाना जाता था। सावन कुमार का जो करियर है वो संजीव के साथ ही शुरू हुआ था फिल्म नौनिहाल से। नौनिहाल के प्रोड्यूसर थे सावन कुमार और फिल्म की जो कहानी थी वो भी सावन ने ही लिखी थी। सावन कुमार की ये पहली फिल्म न सिर्फ बेहद कामयाब रही बल्कि इसे नेशनल अवार्ड भी मिला था दोस्तों।

मोहम्मद रफी की आवाज में नौनिहाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। बिल्कुल अभी सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। मिलते हैं बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम बातें कर रहे हैं सावन कुमार टाकी, जो बहुत ही मशहूर फिल्मकार रहे हैं। दोस्तों, सावन कुमार का ताल्लुक राजस्थान से था। उनका जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। सावन कुमार उन गिने चुने फिल्मकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने कुछ ही फिल्में बनाई, मतलब सिलेक्टेड फिल्में बनाई, लेकिन सब की सब बेहतरीन रही। एक डायरेक्टर के तौर पर सावन कुमार की जो पहली फिल्म थी वो थी गोमती के किनारे। ये 1972 में रिलीज हुई थी। इसमें मीना कुमारी और मुमताज मुख्य भूमिकाओं में नजर आईं। ऐसा माना जाता है कि गोमती के किनारे मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। ये उनके दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई थी और इस फिल्म के बाद तो सावन कुमार को पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ा। उनकी डायरेक्शन का, उनकी काबिलियत का लोहा मानने लगी थी फिल्म इंडस्ट्री। फिलहाल तो मैं आपको सुनाती हूँ बेवफा से वफा फिल्म का वो गाना जो बहुत पसंद किया जाता है।

लता मंगेशकर की आवाज में बेवफा से वफा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। इस गाने को कंपोज किया था उषा खन्ना ने। और दोस्तों, सावन कुमार की ये बहुत ही प्यारी सी फिल्म रही है, शायद आपने देखी हो। जूही चावला कितनी प्यारी लगी है, विवेक मिश्रान भी इसमें थे। मैंने फिल्म देखी है, आपने भी शायद देखी होगी। सावन कुमार की जो फिल्में हैं ना, वो 90s और 20 के दशक के लगभग सभी लोगों ने देखी होंगी। बहुत ज्यादा इनका जो संगीत है वो भी पसंद किया जाता था। दोस्तों, सावन कुमार, जिनका पूरा नाम सावन कुमार टाक है, एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे। उन्होंने फिल्में बनाई, डायरेक्ट की और कई ऐसी फिल्में रही, जी हाँ, कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनके गाने भी सावन ने ही लिखे हैं, जैसे कि सौतन की बेटी, बेवफा से वफा, सबक, देव। और एक फिल्म का नाम मैं लेने वाली हूँ जिसका नाम सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। इस फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। जी हाँ, साल 2004 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के कई गाने सावन कुमार ने लिखे हैं। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी और ये जो गाने थे जो सावन ने लिखे वो भी बहुत बहुत पसंद किए गए थे, जैसे कि ये वाला गाना।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

कहो ना प्यार है फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इस गाने को लिखा था सावन कुमार ने, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, सावन अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं। उन्हें नई नई लोकेशंस पर शूटिंग के लिए भी याद किया जाता है। सौतन फिल्म आपको याद होगी, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरे लीड एक्टर्स थे। सौतन पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग मॉरिशस में हुई। सौतन कई मामलों में सावन कुमार के लिए बहुत ही खास रही। एक बहुत ही जबरदस्त सुपरहिट फिल्म थी ये। सावन ने इसकी कास्टिंग में भी कई तरह के बदलाव किए। अब जैसे कि टीना मुनीम का जो रुक्मिणी वाला किरदार है, उसके लिए उन्होंने पहले जीनत अमान, उसके बाद परवीन बाबी से बात की, लेकिन फाइनल किया टीना मुनीम को। सौतन के जो गाने हैं वो भी सावन कुमार ने लिखे, और इसका संगीत जो कि सुपर हिट रहा वो उनकी पत्नी उषा खन्ना ने दिया था। तो सौतन फिल्म का ये गाना कहीं नहीं है जाना, सुनते रहना आकाशवाणी एफएम गोल्ड।

बताइए, इस तरह से कोई मना करता है भला चाय पीने के लिए? हम चाय पर तो जरूर जाना चाहिए। फिलहाल तो बताऊं आपको कि ये जो गाना है ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, सौतन फिल्म से ये गीत था जिसे सावन कुमार ने लिखा था और इसका संगीत उनकी पत्नी उषा खन्ना ने तैयार किया था। और भी बातें हैं उनके बारे में, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

0: रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सौ 101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं मशहूर फिल्मकार सावन कुमार की। और इसके अलावा जी हां, फिल्में बनाने के अलावा सावन कुमार गाने भी लिखा करते थे, स्क्रीन प्ले भी लिखा करते थे। उनसे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है जो मैं आपको आज सुनाती हूं कि किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह के जीनियस थे सावन कुमार। दोस्तों फिल्म हवस से जुड़ी हुई ये कहानी है। फिल्म का नाम हवस था जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। हवस में नीतू और अनिल धवन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। कहते हैं कि सावन कुमार एक बहुत ही मशहूर गीतकार के पास गए थे हवस के गाने लिखवाने के लिए, लेकिन फीस को लेकर बात नहीं बनी। सावन कुमार ने उन्हें बहुत बहुत मनाया लेकिन वे नहीं माने। अब सावन अंदर से काफी उदास हुए और इसी उदासी में उन्होंने एक गाना लिख दिया। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हवस फिल्म का ये गाना आपने सुना दोस्तों। और अपने संपूर्ण करियर में लगभग 20 फिल्में बनाई सावन कुमार ने, डायरेक्ट की और ज़्यादातर के गाने भी उन्होंने ही लिखे। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल तो वक्त चला है मेरे जाने का, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफ एम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। फिलहाल तो मैं चलती हूँ दोस्तों।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीराला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 वर्ष में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, समुद्री मईशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तिजारत सरमायाकारी के मौके को भी फरोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर आजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतसादी शराकत दारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने में मददगार साबित होगी। सरजद भारत और 5 नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओस्लो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे के खास निकात रहे और बातचीत काफी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इक्तिसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी, इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोतेनबर्ग में सनस से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निजाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारत के तारीखी समझौते के मुदाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वीडी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।

साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदस्य रमेश निथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदस्य सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदस्य के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पीके कुनाहली कुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वीडी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई तश्कील शुदा सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने यह वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असेंबली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वो नेतानार गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप के अहाते में कायम करदा सरकारी खिदमात के मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार और डिजिटल खिदमात तक आसानी से रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सफर कर रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन कुंभों से ताजियत का इजहार किया है जिनके अरकान खानदान इस हादसे में चल बसे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। जनाब मोदी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वें आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। यह 6 रोजा तकरीब आज जनेवा में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असर नौ तश्कील एक मुश्तरका जिम्मेदारी आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के लिए इज्तिमाही अमल की अहमियत को उजागर करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद उसत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फरोग देने, दिफाई सनती साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ताजा तरीन प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 12 मैचों में 14 प्वाइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। उसने अब तक 7 मैचों में जीत हासिल की है और प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हम मनसब योनास गहर स्टोरे के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में 2 तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

0: and uncertainties. Launching the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi today, Mr. Goyal emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
1: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest-growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly, and keep bringing new ideas and innovations forward.
0: Indian Railways has said a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing at the platform. During the incident, the coach was empty and no passengers were present. Railways informed that no injuries or harm to passengers or railway staff has been reported. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today travelled by Metro under Mera Bharat, Mera Yogdan and Metro Monday campaign to promote public transport and fuel conservation. Talking to reporters, Ms. Gupta appealed to all residents to use public transport as much as possible. She said the government is making every effort to ensure there is no inconvenience in public transport and to improve last mile connectivity.
2: We are making every possible effort from the government side to ensure that there is no difficulty in public transport. Greater focus is being placed on improving last mile connectivity. When every individual contributes even a little towards this effort, it will greatly benefit the city of Delhi. It will help provide solutions to various problems in our city, from pollution to several other challenges.
0: Delhi Metro is running 24 additional train trips today to encourage the adoption of the metro over private vehicles. Delhi Metro Rail Corporation said the decision has been taken, keeping in view the significant role of public transport in ensuring energy efficiency, economic viability and environmental sustainability in the prevailing circumstances. U.S. President Donald Trump has warned Iran the clock is ticking as talks to bring the war to an end have stalled. The remarks come as Washington and Tehran sit locked in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. failed to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovepreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110kg-plus category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
4: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
5: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया।

0: केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडचेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
3: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
4: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम उन्नत किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती
1: और मैं हूं रजनीश।
0: बिल्कुल साथियों, गर्मियों का समय चल रहा है और ऐसे में हम तो जहाँ तक भाई अपना ख्याल रखते ही हैं, खूब पानी पीते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपना, लेकिन जो हमारी फसलें इस समय पर जिनको ज़रूरत होती है, कहीं पानी, कहीं सिंचाई प्रबंधन की या फिर बहुत सी चीज़ों से बचने की, कीट हो, रोग हो, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस समय पर आप अपनी खास तौर पर सब्जियों की जो फसलें हैं उनमें क्या कुछ कर सकते हैं ग्रीष्मकाल के टाइम पर, देखभाल कैसे करें सब्जियों की, सिंचाई कैसे करें, संतुलित उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, यही विषय लेकर आज हम आ गए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए, जब हम सही प्रबंधन करेंगे तो तभी हमें पौष्टिक आहार भी मिलेगा, और आहार में सब्जियों का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं ना कि अगर हमारी थाली में हर तरह की सब्जियां हों तभी हमें पौष्टिक आहार, तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहन अच्छा उत्पादन करें सब्जियों का, तो ये बहुत जरूरी है, और उन्हें समसामयिक जानकारी भी मिलती रहे, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो ये समसामयिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और इसके लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आज डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी को, जो प्रधान वैज्ञानिक है शाके विज्ञान विभाग संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी तो डॉक्टर साहब तो बिल्कुल तैयार हैं आपसे अपनी सारी बातें, सारी जो भी उनके पास जानकारी है आप तक पहुंचाने के लिए। आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको फोन नंबर बता रहे हैं, फोन इन प्रोग्राम में आप फोन करें और सीधे जवाब जाने आज के विषय से जुड़ा हुआ, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, नंबर बताते हैं आपको, 01 दिल्ली का स्टडी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल करें 2342108 1, एक और फोन नंबर है 2342108 3।
1: तो देखिए, ये है नंबर, और इन पे आप अपने जो भी मन की जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब सब्जियों की बात होती है तो हमारे आहार में सब्जियों का क्या महत्व है?
2: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है, खास करके जब हम गर्मी की मौसम की बात करते हैं। जो सब्जियां होती हैं, एक तो आपको पोषक तत्व प्रदान करती हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आजकल फाइबर है जो आपके पोषक तत्वों से ज्यादा जरूरी हो गया है। आपके शरीर को अगर जितना आप फाइबर रिच आप खाएंगे खाना, उतना सही होता है आपके लिए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे रंग होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी की हम बात करें, विटामिन ए की बात करें, और जैसे आजकल भिंडी गर्मी के मौसम की एक प्रमुख सब्जी है। हम आयोडीन जानते हैं, आयोडीन से एक बीमारी भी होती है, भिंडी जो है आयोडीन का एक बहुत ही उत्तम सोर्स होता है। साथ साथ भिंडी में जैसे फाइबर के लिए भी, जैसे वो लसलसापन होता है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी प्रकार जैसे आजकल आप देखेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां बहुत लगी होती हैं, इसमें क्या होता है कि 90% इसमें जल पाया जाता है। और अगर हम खरबूजे की बात करें या तरबूज की बात करें, खरबूजा जो खास करके जिसका गूदा ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का होता है, उसमें विटामिन ए से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और खास करके चूंकि आप इनको कच्चा खाते हैं, कच्चा का मतलब इनको बॉइल करके या हम पका के नहीं खाते हैं, इनको एज ए हम फल के रूप में खाते हैं, तो विटामिन सी जितना भी होता है वो आपके बॉडी को, आपके शरीर को पूरा मिलता है। इसी प्रकार से जैसे आप कह रहे थे आजकल क्या होता है, गर्मी में कई बार हमारा स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, या आजकल परीक्षाओं के कारण हुई बच्चों को भी तनाव आ जाता है। तो अगर आप अपने मूड को अगर बदलना चाहते हैं तो आप तरबूज ले आएं, और तरबूज अगर आप खाते हैं तो इससे आपका मूड भी बदल जाएगा, जिस कारण से इसको हम मूड फूड कहते हैं।
1: मूड फूड
2: यानी आपके इसमें एक सेरोटोनिन नामक जो रसायन होता है वो आपके अगर दिमाग में जब पैदा होता है तो आपका जो बॉडी होता है वो खुशनुमा फील करता है।

हमारे बॉडी के लिए जो सोडियम और पोटासियम का बैलेंस होता है वो बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी जो सब्जियां हैं, खास करके जो मैं खरबूजे और तरबूजे की बात कर रहा था, इनमें सोडियम नगण्य होता है, पोटासियम की अधिक मात्रा होती है। इस प्रकार से जो भी हमारे उपभोक्ता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये फायदे की बात है, और जो किसान है वो हर जैसे 45 दिन के बाद उनके ये जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे लौकी है, तोरी है, खीरा है, ककड़ी है, ये फलन देना प्रारंभ करती है। उसके बाद

0: जाता है, अगर मीठा निकल गया तो मूड अच्छा हो जाता है, मीठा नहीं निकला तो मूड खराब हो जाता है। खैर जोक्सिन पार, सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ऐसी कौन सी फसलें हैं जो हम देख रहे हैं खेतों में तैयार है और हमारे किसान मित्रों को जरूरत है उन पर देखभाल करने की, उनके ऊपर केयर करें थोड़ा वो।
1: जी हाँ, जैसे किसानों के जो खेतों में है, एक तो भिंडी उन्होंने लगा रखी है
2: जी,
1: क्योंकि भिंडी ऐसी फसल है जो आजकल आपको सालों भर देखने को मिलती है। तो बारिश के मौसम में भी लोग भिंडी लगाते हैं, गर्मी के मौसम में भिंडी लगाते हैं, और भिंडी की भी हर तीसरे चौथे दिन तुराई होती रहती है, तो भिंडी अभी खेतों में होगी। लोबिया एक है महत्वपूर्ण फसल, लोबिया भी अभी किसानों के खेतों में होगी जिसकी तुराई चल रही होगी। इसी प्रकार जैसे लौकी उनके खेतों में होगी, लौकी की भी अगर एक बार जब फूल आता है तो हर पांचवें छठे दिन लौकी की तुराई होती है। खीरा चल रहा है किसान भाइयों के यहाँ, तोरी है चाहे चिकनी तोरी है या धारीदार तोरी है, उसके बाद तरबूज और खरबूज, ये सारी फसलें जो है किसानों के खेतों में है
2: जी।
1: अब जैसे आपने कहा कि अगर गर्मी चूंकि बढ़ती जा रही है
2: जी,
1: ये सारी जो फसलें हैं आमतौर पे ये गर्मी के मौसम की ही फसल होती है, लेकिन इसमें हमें जो सबसे प्रमुख जो काम करना होता है वो सिंचाई पे हमें ध्यान देना है
2: जी।
1: तो पहली चीज उसमें जो हमें सावधानी रखनी है कि चूंकि दिन के समय गर्मी बहुत हो जाती है, तो हमें दोपहर में या दिन में जब सूरज आ चुका है तो हमें सिंचाई नहीं करनी है। या तो सबसे अच्छा होगा कि हम बिल्कुल हम शाम को रात में हम सिंचाई करें
2: जी,
1: और अगर किसी कारण से अगर नहीं कर पाए तो हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हमको सिंचाई करना चाहिए। दिन के समय हमें सिंचाई का प्रबंध करने से हमें बचना चाहिए।
0: ये अपने अपने बचाव के लिए या फलों पे,
1: ये पौधों के बचाव के लिए भी जरूरी अच्छा। है, और खास करके जैसे आजकल बहुत सारे जो अच्छे किसान हैं वो ड्रिप इरिगेशन का लगाते हैं
2: जी, जी।
1: आप देखते होंगे कि आमतौर पे क्या होता है कि जो ड्रिप की पाइप होती है वो काले रंग की होती है, और उससे जो निकलते हैं जो छोटी छोटी जो लैटरल्स होती हैं वो भी काले रंग की होती है। अगर काले रंग की पाइप में पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो राजस्थान वगैरह के इलाके में एक तो पाइप जो है उसको हम सफेद रंग का पाइप हम यूज कर सकते हैं, काला पाइप हम ना यूज करें। और ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कभी भी दिन के समय हम पानी ना डालें।
0: सर इस पे और बात करेंगे, सर एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं क्या वो पूछना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं अर्जुन प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं गोंडा यूपी से विजिट करता हूँ लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ
0: जी। पूछिए सर।
3: और बैगन और सेम के फूल लगे हुए हैं लेकिन फूल रुक नहीं रहे
0: जी।
1: जी हाँ, ऐसे तो इन्होंने देखिए बैगन और सेम के बारे में पूछा है, यही मैं इनको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि अगर हम जिस समय में ये फसल हमें लगाना चाहिए अगर हम उस समय में नहीं लगाएंगे तो ये समस्या आएगी। जैसे जो सेम की फसल होती है वो आम तौर पे जुलाई अगस्त में लगानी चाहिए, और उसके बाद ये आपको अगले साल फरवरी मार्च तक आपकी वो फसल चल सकती है।
2: तो डॉक्टर साहब,
0: जल प्रबंधन की बात चल रही थी,
2: जल प्रबंधन की बात कर रही थी। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, आज के इस समय में बहुत तेज लू चल रही है, बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में मतलब पानी की सिंचाई, आपने जैसे टपक सिंचाई के बारे में बताया, तो और क्या क्या विधियां हो सकती हैं कि हमारा जो जमीन में है नमी भी बनी रहे और पौधे को भी पानी मिलता रहे, वो ड्राई ना हो?
1: जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा है। इसमें हमें क्या करना है कि पौधे के जड़ में बहुत ज्यादा पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जो गर्मी के मौसम में, जैसे एक तो पहले जितनी बेल वाली फसलें हैं, कद्दू है, लौकी है, तोरी है, जो भी है, इसको जब हम लगाते हैं तो हम नाली बना के लगाते हैं, और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जो जगह होती है उसमें ये बेल फैलती है, उसमें फल रहते हैं। पानी सिर्फ हम नालियों में डालते हैं
2: जी।
1: इससे एक तो फायदा ये होता है कि हमें पानी की बचत होती है, दूसरा फायदा ये होता है जो एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जगह होती है जहां बेल फैलती है वो सूखी रहती है, तो उसमें जो फल होता है वो कभी भी नमी के संपर्क में नहीं आता है, तो फल आपका सही रहता है। एक तो हमें ये ध्यान देना होता है, दूसरा है उससे आपको खरपतवार भी उसमें कम उसमें आएगा, और उसके बाद अगर एक तो तरीका ये होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई भिंडी लगाई तो आप उसको रिज पे यानी मेर बना के अगर हम लगाते हैं, तो मेरों में भी हम क्या करते हैं कि मेर, एक मेर से दूसरे मेर के बीच की जो नाली होती है उसमें हम पानी डालते हैं, कभी भी हमें पानी उसके ऊपर तक नहीं डालना चाहिए, यानी जब आधा नाली अगर भर जाए या तीन चौथाई अगर नाली भर जाए उसके बाद हमें पानी बंद कर देना है, तो उससे क्या होगा उसके रिसाव से ऊपर तक पानी आ जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो मिट्टी जो भुरभुरापन है वो बंद हो जाएगा। मिट्टी अगर भुरभुरी नहीं रहेगी तो पौधे को जो हवा भी चाहिए, जड़ों को हवा मिलना बंद हो जाएगा। एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा, अब मैं एक चीज और बताऊं, जैसे अभी का मौसम

0: इतनी गर्मी है। अभी मैं कल ही परसों में किसी किसान के यहाँ देख के आया कि धनिया की फसल किसान ले रहा है, इतनी गर्मी है। कैसे ले रहा है? क्योंकि पूरी जो उसने मेर बनाई है वो कम से कम 20 सेंटीमीटर ऊंची मेर पे धनिया लगा हुआ है
1: जी।
0: पानी सिर्फ उनके बीच की जो नाली है उसमें इतना डाला जाता है कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही पानी पहुंचता है, जिससे कि उसके जड़ में नमी तो जाएगी लेकिन पानी नहीं जाएगा, जिससे वो फसल खराब नहीं होगी। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि मान लीजिए एक होता है टपक सिंचाई, जिन किसान भाइयों के यहाँ अगर सुविधा है तो बेड बनाते हैं, बेड के ऊपर मल्चिंग करते हैं और उसमें ड्रिप इरिगेशन से टपक सिंचाई से पौधे को पानी देते हैं। लेकिन जहां पे नहीं है, जैसे राजस्थान का पूरा इलाका है, चूंकि उसमें थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो उसका एक अल्टरनेट होता है जिसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। तो स्प्रिंकलर में क्या है कि एक पाइप में अगर 5-7 आप छोटे छोटे स्प्रिंकलर लगा देते हैं और जितना एरिया में आपकी सिंचाई हो जाती है फिर उसी पाइप को आप मूव करते जाते हैं और पूरे खेतों की सिंचाई आप कम पैसे की भी आपकी बचत हो गई, पानी की भी बचत हो गई और आपके खेतों की सिंचाई भी अच्छे ढंग से हो जाती है।
2: जी डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी बातें कि किस तरह से हमारे किसान मित्र सिंचाई का भी ध्यान रख सकते हैं, जल प्रबंधन अगर करना है कौन सी विधि अपनाई जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कॉलर जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो
3: हेलो,
2: नमस्कार सर।
3: हाँ, कार्यक्रम किसान की बात।
2: जी जी, पूछिए सर। हाँ, प्रश्न, नाम भी बताइए अपना।
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
2: जी
3: जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमन करता हूँ।
2: जी सर।
3: और मेरे तीन सीधे साधे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक भिंडी, बैंगन और अरबी और कटहल और सीताफल,
2: जी
3: जिसे हम ये कटहल कहते हैं और सीताफल, तो ये जो मैंने 5 सब्जियां गिनाई इनके फायदे और नुकसान से वाकिफ कराएं विस्तार से। और ये जो फल होते हैं खरबूजा और तरबूजा, इनमें से ज्यादा फायदा किसका सेवन करने से होगा और इसके भी फायदे और नुकसान से वाकिफ कराएं। और तीसरा और अहम आखिरी सवाल मेरा ये है कि कई लोग कहते हैं कि फल फ्रूट और सलाद हमें जो है खाना खाने के बाद खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले खाना चाहिए, तो इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी हाँ, इन्होंने जैसे भिंडी के बारे में पूछा है, भिंडी में बता भी रहा था जो भिंडी खाने से हमें क्या फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक तो इसमें फाइबर काफी होता है। आजकल के खास करके जो लोग जिनको ओबेसिटी की समस्या है, जिनका वजन बढ़ता जा रहा है, तो उनको ऐसे फूड चाहिए जिसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, ये उनके लिए फायदेमंद होता है। प्लस उसके बाद इन्होंने पूछा कि कुछ और जो इसे खरबूज तरबूज इनके और क्या फायदे होते हैं। एक तो जैसे तरबूजा क्या होता है, उसमें रंग लाल रंग का होता है तो उसमें लाइकोपीन होता है, यानी उसमें एंटी कैंसरस कंपाउंड उसमें होता है, वो आपके ब्लड फ्लो को, उसमें एक केमिकल होता है जिसको हम

0: कुछ हेल्थ प्रमोटिंग केमिकल्स होते हैं, जो सिट्रोलिन होता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है। तो जितनी भी सब्जियां हैं, इन्होंने कटहल की भी बात पूछ रही थी, अल्दो कटहल हमारे इसमें नहीं है, लेकिन कटहल में भी यही फायदा होता है कि वो काफी उसमें फाइबर रिच होता है, इसीलिए हम सब्जी के रूप में भी हम कटहल को हम खाते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी सब्जियां आप खाते हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको यही होता है कि अलग अलग आपको हेल्थ प्रमोटिंग सब्सटेंस, जैसे मैं करेले की बात बता रहा था, करेला में आपको पता है कि उसमें आजकल जितने डायबिटीज के लोग होते हैं वो करेले का सेवन करते हैं, करेले का जूस तक पीते हैं, क्योंकि उसमें जो चेरेंटीन होता है वो कंपाउंड ऐसा होता है जो हमारे डायबिटीज को कम करता है। इस कारण से हमें इन सब्जियों की डिमांड, और खास करके जो गर्मी के मौसम में, और जो ऐसे लोग हैं जिनको कैलोरी कम चाहिए और पोषक तत्व ज्यादा चाहिए, ये जितनी, चूंकि 90% इसमें पानी होता है इसीलिए इसमें कैलोरी कम होता है। लौकी का भी लोग जूस पीते हैं, या लौकी भी काफी आपके स्वास्थ्य के लिए इसी कारण से फायदेमंद है। एक तो ये बहुत ही सुपाच्य होता है, और जितनी भी इसमें सब्जियां उन्होंने बताई, सब में फाइबर की मात्रा अधिक होगी, तो डायबिटीज के जो लोग हैं उनको ये फायदा पहुंचाती है। जो रंगीन सब्जियां होंगी, जैसे उसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है, इस कारण से ये सभी सब्जियां जो हैं ये आपको फायदेमंद करती है।
1: डॉक्टर साहब, अब हमने अपने पोषक तत्वों की तो बात कर ली, लेकिन पौधों के पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा है, और आजकल जैसा हमारे किसान भाई भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं उनका भी हमेशा आह्वान होता है कि हमें पौधों को ऐसे उगाना है जिसमें हम रसायन का उपयोग कम से कम करें, और अगर हम उसमें प्राकृतिक तरीके से अगर उनको हम पोषक का तत्वों का अगर हम प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसान भाइयों को ये सोचना है कि जब हम उगाएं उससे पहले से हमें उसकी तैयारी करनी है। जैसे अगर हम अगली फसल अगर हम उगाते हैं, अभी से अगर उस फसल में के लिए अगर हम ढांचा लगा देते हैं अपने खेतों में, और ढांचा लगा के उसको हम 45 दिन बाद उसको हम फिर से उसी खेत में पलट के, और पानी जब आएगा तो उस पानी से अगर वो गल जाता है, तो आपकी जो फसल है उसमें आपने किसी रसायन का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसमें कम से कम 20 किलो नाइट्रोजन आपके खेतों में आ गया। तो इस प्रकार से हमको ये तरीके अपनाने होंगे जिससे कि हम, जैसे ढांचा एक उदाहरण था, इसी प्रकार जैसे गर्मी के मौसम अगर आप चाहें तो मूंग की फसल ले सकते थे, मूंग जो दलहनी फसल भी है, आपको दाल भी मिल सकती है, और तोड़ने के बाद आप उस फसल को अपने खेतों में उसको पलट के उसको खेतों में ही रखें। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, किसान के आदमी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी हम मिट्टी से हम ले रहे हैं, मिट्टी का जो पोषक तत्व है उसको हमको दोबारा मिट्टी में देना है। बहुत जगह जैसे वो पराली जलाई जाती है, लेकिन आजकल सरकार के प्रयत्न से बायो सीएनजी का आविष्कार हुआ है, काफी जगहों पे ये बायो सीएनजी या सीबीजी लग रहा है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाती है, चाहे वो पराली से बनाए, चाहे मक्के का जो डंठल होता है उससे बनाए, या किसी अन्य चीजों से बनाए, उसके बाद जो बचता है उसका भी एक मैन्योर बन के मार्केट में आ रहा है, जिसको हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। पहले जो किसान गोबर की खाद डालते थे वो फार्म यार्ड मैन्योर होता था, वो किसान खुद बनाता था। समस्या क्या हो रही है, धीरे धीरे पशुओं की संख्या किसानों के यहाँ कम होती जा रही है, तो किसानों के पास जो गोबर की खाद है वो कम है। सब्जी की फसल अच्छी तभी होगी जब आप अपने खेतों में कम से कम 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अगर आप बिल्कुल सरी हुई गोबर की खाद डालेंगे। लेकिन अगर आपके पास अगर गोबर की खाद सरी हुई नहीं है, तो उसका दूसरा विकल्प जो है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जितने भी ये सीबीजी बनाने वाली कंपनियां हैं ये बोरे में पैक करके अब बेच रही हैं, जो आपका भूसा था या जो आपका ये पराली था उसको इन्होंने खाद बना दिया है, तो उसको भी लेके आप अपने खेतों में अगर डालेंगे, कम से कम आपको चाहिए कि 50% हिस्सा आप उससे डालें, बाकी जो 50% है उसको आप रासायनिक खादों से पूरा कर सकते हैं। रासायनिक खादों में भी पूरा करने में क्या होता है कि जैसे सब्जी की जो फसल होती है ये कम से कम 3 महीने की फसल होती है। पहले के जो कन्वेंशनल मेथड से जो करते थे वो क्या करते थे कि सारा खाद एक ही बार में डाल देते थे, लेकिन जैसे अब हमने ड्रिप की बात की
1: जी,
0: अगर हम ड्रिप से अगर हम सिंचाई करते हैं तो ड्रिप से हम पौधों को हम पोषक तत्व भी देते हैं, जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं, यानी इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ऐसे अगर आप 150 किलो अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जिसको आप 3 भाग में देते थे, अगर आप फर्टिगेशन से देंगे सिर्फ आप 70 किलो या 80 किलो ही देंगे, यानी लगभग उससे 40% आप बचाव कर सकते हैं। फायदा क्यों होता है, क्योंकि जब उसमें आप

0: बार डालते हैं तो आपका बहुत सारा हिस्सा जो होता है या तो पानी के साथ बह जाता है या गैस बन के उड़ जाता है। लेकिन पौधे को जब आवश्यकता होती है अगर उसी समय थोड़ी मात्रा में अगर देंगे, जैसे हम भोजन बार बार करते हैं, डॉक्टर आपको बताता है, उसी प्रकार अगर आप फर्टिगेशन की सुविधा अगर आपके पास है, हर दूसरे दिन अगर आप पौधों को पोषक तत्व देंगे और सिर्फ उनके जड़ों में ही देंगे, पानी का भी बचत होगी और जो हमारे पोषक तत्व हैं इनकी भी बचत होगी। लेकिन जिन किसानों के पास अगर नहीं है तब भी उन्हें मैं यही सलाह दूंगा, एक तो जो फार्मयार्ड मैन्योर है उसका भरपूर प्रयोग करें, जो भी हरी खाद अगर आप अपने खेतों में लगा सकते हैं उसका प्रयोग करें, अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो जीवाणु वाले बहुत सारे आजकल जैसे ट्राइकोडर्मा आता है, अगर आप अपनी गोबर की खाद में अगर ट्राइकोडर्मा मिला के अगर उसका उपयोग करेंगे तो आपकी मृदा भी स्वस्थ रहेगी, आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, आपके पोषक तत्व का भी प्रबंधन अधिक होगा। उसके बाद जो भी मात्रा अगर आप पोटास की डालते हैं और इसकी डीएपी की डालते हैं, इसको आप पहले डाल लें जब अंतिम जुताई के बाद। जो नाइट्रोजन या अगर यूरिया डालना चाहते हैं उसको आप तीन या चार हिस्सों में, आधा आप पहले डाल दें, आधे को आप तीन या चार हिस्सों में हर 15 दिन के बाद जब भी आप सिंचाई करते हैं थोड़ा थोड़ा डालें, तो इससे पौधे को लगातार मिलता रहेगा। चूंकि मैं चूंकि यहाँ बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो मिठास वाली फसलें हैं, खरबूज और तरबूज की बात हो रही है, जो इनकी मिठास होती है ये पोटास से मिठास बढ़ती है, पोटास से आपके फसल में चमक भी आती है। तो पोटास का आप फोलियर स्प्रे यानी उसका घोल बना के, जैसे 1% पोटास का आप घोल बना के और आप पत्तियों पे इसका छिड़काव कर सकते हैं, और खास करके ये तब करना है जब पौधे में फल लग गया है और फल वृद्धि हो रहा है, कि जिससे उसकी मिठास भी बढ़ेगी, जो उसकी फल में चमक होगी वो बढ़ेगी। तो मार्केट में जब आप ले जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि किसान का मूड ठीक तभी होगा जब मिठास अच्छी हो, अगर आप पोटास का उपयोग करेंगे तो वो मीठा भी होगा और आपको दाम भी अच्छा मिलेगा।
1: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी जो भी फसलें हमारे खेतों में खड़ी हैं, किसान मित्रों को कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अब अगर कोई रोग, इस समय क्या रोग है जो लग सकते हैं, उससे समस्या का समाधान भी किसानों को मिल जाए?
0: जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अभी एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अगर इस साल आपने देखा होगा 2-3 बार बारिश आ गई गर्मी के मौसम में, एकाएक बारिश, अगर कभी भी गर्मी के मौसम में अगर एकाएक बारिश आती है जी। एक बीमारी आती है जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, जो पत्ता आता है पहले उस पर पीले पीले धब्बे बनते हैं और पीले पीले धब्बों के बाद फिर वो भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, और अगर आप 2 दिन अगर उसका ये नहीं करेंगे तो पूरी फसल आपकी बर्बाद हो सकती है। इसके बचाव के लिए हमको करना चाहिए कि डाइथेन M45 एक दवा है, उसका 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के हम छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद कई बार वायरस की बीमारियां भी इस मौसम में आती हैं, जो सफेद मक्खियों से आ सकती हैं। जब किसान भाई लगाते हैं उस समय उनके बाउंड्री पे चारों तरफ अगर मक्की लगा लें या ज्वार लगा लें तो उससे क्या होगा कि वो आपके फसल को कम नुकसान करेंगे, वो उसी के पत्तों में चिपक जाएंगे और आपको रसायन का भी कम प्रयोग। लेकिन अगर आ गया है पहले तो उन पौधों को निकाल के दबा दें, और नहीं तो कोई भी जो चूसक कीड़ों को मारने की दवा है जैसे इमिडाक्लोप्रिड उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और समस्या बहुत आती है, खास करके फल मक्खी की समस्या, ये जितने कद्दू वर्गीय सब्जी है इसमें फल मक्खी लगती है, और बहुत कोई भी मान केमिकल मेथड से इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एक फेरोमोन ट्रैप आता है, क्यू ल्योर का एक फेरोमोन ट्रैप आता है, जिसमें एक डब्बा होता है, उसमें एक छेद होता है और अंदर एक टिकिया होती है, उस टिकिया में ऐसी गंध होती है, जितने नर्म वो होते हैं मक्खी वो अंदर चले जाते हैं और अंदर ही रह जाते हैं, जिस कारण इनका अंडा कम बनता है और इनकी संख्या कंट्रोल हो जाती है। तो इसको आप अगर फल मक्खी के 1 एकड़ में अगर कम से कम 7-8 अगर फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो आप सुरक्षित सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, अब एक चीज और है डॉक्टर साहब कि हमारे किसान मित्र अब सब्जियों पर लगाने में उसकी सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन सब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब कई किसानों को ये वो रहता है समस्या, पहचान नहीं पाते कि अब सब्जी की तुड़ाई का समय हो गया है या अभी नहीं हुआ है, कैसे पहचाने और तुड़ाई का कोई विशेष तरीका या किस तरह करनी चाहिए?
0: जी हाँ, चूंकि ये गर्मी के मौसम में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो जो सबसे मुख्य बात यह है कि इसकी तुराई आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर लें या बिल्कुल जब शाम एकदम खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम करें जब मौसम ठंडा रहे। दूसरा है कि हम कैसे पहचाने, जैसे लौकी है, लौकी अगर हम मार्केट में जाने तो आप कैसे समझेंगे कि ये लौकी ताजी है? अगर उस पर रोया है, अगर रोया अगर बना हुआ है तो इसका मतलब आप समझेंगे ये लौकी जो है ये सही है इस स्टेज।

0: में इसको हमको तोड़ना है। अगर उसका रोया खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि लौकी जो है ज्यादा मैच्योर हो गई है। जैसे आपने तरबूजे की बात की थी, खास करके जो तरबूजे के उपभोक्ता है उनकी बड़ी शिकायत होती है, कौन सा तरबूजा मीठा होगा, कौन सा तरबूजा नहीं होगा।
1: उसकी कोई पहचान भी?
0: बिल्कुल, उसकी पहचान है। जो किसान जानते हैं वो जानते हैं कि जिस बेल पे वो लगी होती है वहां की डंठल अगर सूख जाती है, एक तो ये पहचान होती है। जो उपभोक्ता पहचानता है कि जहां मिट्टी में जहां पे वो फल सटा होता है, यानी अगर आपके फल पे कोई भी हिस्सा जिसमें कि पीलापन आ गया है तो तरबूजा, इसका मतलब पका हुआ है। उसके बाद जैसे एक थंपिंग साउंड होता है, जब हम उस पे साउंड करते हैं तो मेटलिक साउंड यानी खनखन की जो आवाज होती है, इसका मतलब वो कच्चा है। अगर आप डालते हैं तो अगर वो बिल्कुल डल साउंड करता है यानी खनखन नहीं करता है, इसका मतलब है वो पका हुआ है। इससे आप पहचान सकते हैं
1: भरे हुए जैसी आवाज है,
0: हाँ, कि ये मिठास भी इसमें होने की संभावना है और ये मीठा भी होगा।
2: खरबूजे के बारे में बता दो, क्योंकि आरती को बड़ी जिज्ञासा है, जब भी मंडी में जाती है इनका खरबूज और तरबूज कब मीठा निकलता है?
0: खरबूज में क्या होता है, एक तो देखिए उसकी सुगंध से हम पहचानते हैं कि खरबूजे में कितना है। खरबूजा जो अगर पका होता है तो आप देखते होंगे कि बेल से वो खुद ही अलग हो जाता है, लेकिन आजकल किसान क्या होता है कि जब उस स्टेज में ले जाएंगे तो मार्केट में बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए उससे वो थोड़ा पहले जो हाफ स्लिप स्टेज कहते हैं उस पे वो खरबूजे को तोड़ लेते हैं, जिस कारण से जो उनकी मार्केट की सेल्फ लाइफ होती है वो अच्छी होती है। तो आप तो उसकी एक तो सुगंध से उसको पहचान सकते हैं, उसके रंग से पहचान सकते हैं, फिर आप खरबूजे को पहचान सकते हैं कि, और चमक से। जैसे अगर मार्केट में अगर आपको कोई ऐसा खरबूजा दिख रहा है जिसमें चमक नहीं है, इसका मतलब है कि किसी बीमारी और इसके कारण उसके पौधे मर गए हैं और उसके फल जो थे वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुए थे, उसी स्टेज में उसको तोड़ लिया गया है। अगर उसमें चमक नहीं है तो ये भी दिखाता है कि इसका मतलब उसमें मिठास उतनी अच्छी नहीं होगी।
2: डॉक्टर साहब, अब क्योंकि पैकेजिंग का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, तो किस तरह से जब किसान अपने फलों को और सब्जियों को
0: तोड़े, हाँ,
2: तो उसकी ग्रेडिंग कैसे करे,
0: जी हाँ,
2: मंडी में कैसे लेके जाए ताकि उसको दाम अच्छे मिले?
0: ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी हम खरबूजे की बात कर रहे थे। आमतौर पे मैं देखता हूँ किसानों को क्या करते हैं, पहले तो बोरे में ले जाते थे तो उसमें रगड़ लग के खराब हो जाता, अब वो क्या करते हैं कि पॉलीथिन में भर लेते हैं। अब पॉलीथिन इतनी गर्मी है और एक के ऊपर अगर आप 10 खरबूजा अगर डाल देंगे तो उसके कारण से ही उसमें इथिलीन इतनी ज्यादा निकलेगी कि वो खराब हो जाती है। अगर उसको आप क्रेट में, जो प्लास्टिक की क्रेट आती है उसमें अगर आप सजा के ले जाएं तो अच्छा रहेगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हम और क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लौकी, जैसे पपीता जितना आता है उस हर पपीते के ऊपर न्यूज़पेपर रैप किया होता है, लौकी के ऊपर भी अगर आप न्यूज़पेपर से अगर आप रैपिंग करके अगर मार्केट में लाएंगे तो उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। जिसमें रोए की बात कर रहा था वो उसमें बना रहेगा और उसे जो इवेपोरेशन यानी पानी का जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। नहीं तो गृहिणियों की शिकायत होती है कि जब हम लौकी लाते हैं तो फिर कुकर में हमको डाल डाल के सीटी मार के उसको पकाना पड़ता है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर लौकी को अगर मार्केट में ले जाएंगे तो आपकी लौकी जो रहेगी आपको कीमत भी अच्छी देगी, किसानों का भी फायदा है, उपभोक्ताओं का भी फायदा है।
1: जी बिल्कुल,
2: ग्रेडिंग भी करना,
0: जी हाँ, एक साइज के जैसे जो फल हैं उनको अगर आप एक साथ अगर मार्केट में ले जाएंगे जिससे कि वो यूनिफॉर्म यानी सभी एक तरीके के दिखेंगे, जो ग्रेड ए है तो उसको आप अलग रखें, ग्रेड बी को अगर आप अलग रखें तो मार्केट में आपको कीमत अधिक मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि जो आगे हमारे किसान में फसल लगाना चाह रहे हैं तो क्या उन्हें अभी कुछ करना चाहिए कि?
0: जी हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि खास करके जो भी किसान सब्जी लगाते हैं उन्हें नर्सरी की आवश्यकता होती है और इस समय में हम देख रहे हैं कि कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। कम से कम जिस एरिया में अगर आप नर्सरी उगाते हैं उसकी आप अच्छी गहरी जुताई कर दें, उसको पानी से भर दें और उसके ऊपर एक सफेद पॉलीथीन जो होता है कम से कम 200 से 400 जीएसएम की उसको डाल दें। अंदर का जो तापमान होगा, अगर बाहर 45 डिग्री है तो अंदर 50 से 60 डिग्री हो जाएगा और ऐसा करके कम से कम एक महीने तक पूरी गर्मी आप उसको रख दें। उसमें जितने खरपतवार होंगे सब मर जाएंगे, जितने रोग होंगे उनके कीटाणु मर जाएंगे, कोई आपने पैसा नहीं खर्च किया। इसको हम सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं, सिर्फ सूरज की गर्मी से आपने अपने खेत के नर्सरी को रोग मुक्त और वीड मुक्त आपने कर लिया और इससे जो आपका पौधा होगा कम से कम 30-40 दिन तक स्वस्थ रहेगा।
1: जी, मृदा सौर्यकरण इसको ये भी कहा जाएगा सर। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी बताई कि किस तरह से हम अपनी सब्जियों की देखभाल कर सकते हैं, सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, संतुलित उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, और उम्मीद हमारे किसान मित्रों ने बहुत ध्यान से सुना होगा और जो अब उनकी फसलें खड़ी हैं और जो बाजार में ले जाने के लिए तैयार हैं उनमें वो सभी चीजें बहुत सही मात्रा से सही ढंग से तरीके से कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी जुड़े थे जो प्रधान वैज्ञानिक है शाके विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आज के कार्यक्रम उन्नत किसान से मैं आरती
2: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चा अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूल के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले में पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप

हाँ जी, अब और नहीं किया जाता होल्ड अपने एक्साइटमेंट और क्या, क्योंकि आ चुका है मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम FM गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। और हम हैं रूमी मलिक, जिसका हमें था इंतजार, आखिर वो घड़ी आ ही गई है।

क्या इंतजार, देख लो मंडे आफ्टरनून्स को बनाने के लिए दिलकश आ गए हम आपके पास। मन भावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और झड़ी लगी हुई है, झड़ी रे झड़ी, मैसेजेस की ये झड़ी। कुमकुम जी, हाँ जी, इन्होंने अपने आप को, देखो क्या बात है, बहुत कमाल की बात है, ऐसे एड्रेस करना चाहिए, अपने नाम में इन्होंने रखा है। कुमकुम जी हमें क्या लिख रही है, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, आवाज मुकेश, फिल्म अनाड़ी। अच्छे सुनना है ये गीत मेरी जान, अभी सुनाते। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। कुमकुम आपके साथ कौन कौन है, विजय सुरलकर हैं, रत्नमाला हैं, और मोताला महाराष्ट्र से आप लिख रही हैं। रूमी जी वेलकम, इन्होंने लिखा है मुझे, भाई मेरी जो स्पेलिंग ठीक से लिखा करो यार, म में बड़ी ई की मात्रा, रूमी रूमी रूमी नहीं है ये, है ना, ठीक है कुमकुम जी। ओके जी, अब बाकी कितने उन्होंने लिखा है हमें, हम उनके नाम तो पढ़ दें, अटेंडेंस तो लगा लें। अरे पांडु, चंदन, शमसुल, कमर, राही, गंड डुंडवारा, देखो मैं पूरा पढ़ती हूँ, हरजिंदर शिंडा, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, मोहम्मद सैयद अबासी जी, धर्मेंद्र छीपा जी, HR पांड्या, रुपेश सांघाई, बबलेश पंवार, देखो ये अटेंडेंस हो रही है, ठीक है ना, नाम बोले जाते हैं अटेंडेंस में, एड्रेस नहीं बोला जाता। अस्मा खातून, और देखें किशन वंजानी, संदीप मक्कड़, चंदूलाल पटवा जी, और अकरम हुसैन प्रिंस, ठीक है ना, ये सारे नाम मैंने ले लिए। अनंता वाड़े, सतीश अनेजा जी, कौशल्या देवानगन जी, है ना, एक मिनट रुको, और कोई है नाम, फारूक अली खान है, रोशन जहान है, ठीक है, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब तक ये आए हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज मैंने पढ़ दिए सबके नाम, कौशल्या जोशी, किशोर गुप्ता, आर

मार संदीप सिंह, अहमद फूलवाले, मेहर अरोड़ा, हनुमंत शिंदे, अनिल मोहन, ताज मोहम्मद, नीटू मल्होत्रा, देखो फागुराम यादव है ना, ठीक है। तो अब मैं कह रही थी विश्वनाथ साहू जी, आप सभी का, बबलेश पावर सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये सुन ले हम गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, कोई बात नहीं फिर भी भगवान हमारे साथ है, और नहीं तो क्या।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और अनंत वाड़े जी हमको लिख रहे हैं मेल, वाड़ी खामगांव से। अनंता के साथ में रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार सुनना चाहते हैं फिल्म काम चोर का गीत। हाय हाय, गर्मी में काम करने का दिल नहीं करता है ना, काम चोर नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी से आप बच के रहें और खासकर अपने सिर को भी ढक के रखें। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, पहले के जमाने में पगड़ी पहनते थे या आंचल सिर पे रखते थे, आजकल हैट या कैप लगाते हो, स्कार्फ पहनते हो, बात तो वही है ना। क्योंकि हीट जो होती है वो बहुत ज्यादा दोनों एंड्स पे, सिर और पैर से बहुत जल्दी एस्केप होती है, तो अपने दिमाग को भी ठंडा रखो अच्छे से। कई बार होता है ना गर्मी में लोगों का बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो ठंडे रहो, कूल रहो और अच्छे अच्छे गाने सुनते रहो। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एफएम गोल सुन रहे हैं आप, आकाशवाणी पर मन भावन कार्यक्रम चल रहा है। गिरीश बैम हमको मैसेज लिखते हैं वडोदरा गुजरात से। मैंने ठीक नाम आपका पढ़ा, पर आपने बहुत अच्छा मेल बहुत अच्छे से लिखा। यही फर्क होता है। देखो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आपकी भाषा ही आपके पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा है। आप किस तरह से ईमेल लिखते हैं उसी से मालूम चल जाता है सब कुछ, ज़्यादा क्या कहने की ज़रूरत। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड रूमी जी, आर यू एम आई है, एम एम आई नहीं है जी, रिस्पेक्टेड रूमी जी। वी आर रेगुलर लिसनर्स ऑफ ए आई आर एफ एम गोल्ड डेली, थैंक यू सो मच। मैसेजेस आर नॉट टेकन इन मन भावन। नो नो, दैट इज नॉट द केस गिरीश जी, वी डू टेक मैसेजेस एज एंड व्हेन वी गेट इट, है ना। कई बार जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ईमेल्स का, तो कुछ ईमेल्स नीचे चली जाती हैं, तो आरजे अपने ही सॉर्टिंग जिस भी तरह से करते हैं, कोशिश तो यही होती है सबके नाम पढ़ने की। अभी कह रहे हैं कि प्लीज प्ले द सॉन्ग फ्रॉम अवतार। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना। गिरीश बैम, वैशाली, अजिंक्या, अंजलि, जीत, रिया, अतुल, स्वाति, गुजरात से सुनिए ये गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आपका स्वागत है। हमारे साथ अगले लिस्टनर जुड़ चुके हैं चुरू राजस्थान से, भंवर सिंह मीणा जी, राजा नंदवाणी जी, जगदीश मंडल जी, अरविंद खारडिया जी। ये चाहते हैं फिल्म अनुरोध का गीत सुनना, मेरे दिल ने तड़प के क्या कहा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

0: के संदेश आ रहे हैं, हम भी तो आपकी क्लास में बैठे हैं मैडम। नई दिल्ली उत्तम नगर से जयराम खोरवाल लिख रहे हैं हमें, सचिन के साथ, अमन दीपांशु के साथ, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म शालीमार का गीत, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। तो ये गाना कहा है आपने, हम नहीं बात करते आपसे, जयराम जी की, जयराम जी की कह रही हूँ आपको, पर गाना आपके पसंद का सुना देती हूँ। जयराम आपको वो गीत नहीं पसंद शालीमार का, मेरा प्यार शालीमार, क्या गाना, ये पत्थर ये है रूबी, क्या कमाल का गाना गाया है आशा जी ने वो। पर चलिए अब हम ये गीत सुनाते हैं आपको, ये बेवफा वाला गीत है ना। अपनी पसंद बता दी है ना, देखो। क्या कहें, चलो इस गीत के उस पार कुछ कहेंगे अगर कहा तो।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

के प्रति, तभी हम आज तक यहाँ हैं, आपके सामने प्रूफ है। सचमुच में क्या बताना था आपको शालीमार फिल्म के बारे में भाई? सबसे पहले तो ये पता लगा कि इस गाने में झींगा लाला झींगा लाला उ, तो झींगा लाला जो है, जो शब्दों काफी इस्तेमाल होता है मजाक मजाक में, वो देखिए इस गीत में है। दूसरी चीज, शालीमार फिल्म में धर्मेंद्र थे और रेक्स हैरिसन भी थे क्योंकि ये फॉरेन कोलैबोरेशन से बनाई गई थी ये फिल्म, और ये दोनों एक्टर्स जो है हिंदुस्तान के, बहुत मुझे लगता है विश्व के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक बार गणना हुई थी धर्मेंद्र जी की, तो धर्मेंद्र और रेक्स हैरिसन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और दोनों को एक दूसरे की भाषा भी नहीं आती थी, तो दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते थे। धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी और रेक्स हैरिसन अंग्रेजी में, उनको एक दूसरे को समझ में नहीं आता। खैर, फिर भी फिल्म तो बनी और गीत तो हिट रहे। रिस्पेक्टेड आरजे, योर वॉइस इज सो स्वीट। अच्छा, सचमुच में? कौन लिख रहे हैं? सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली, और आप सुनना चाहते हैं गीत अपने प्यार के सपने सच हुए। मैं सचमुच में दुआ करती हूँ, दिल से दुआ है, दिल से दुआ है, जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, आप सारे सपने आप लोगों के पूरे हों। आप सुन रहे हैं आरजे रूमी मलिक को आकाशवाणी एफएम गोल्ड मन भावन कार्यक्रम में 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। खरा सोना।

सच हुए। भारत भूषण जी मुझे व्हाइट फील्ड बैंगलोर से लिख रहे हैं, देखो इनका एड्रेस याद हो गया। लिखते हैं, इंडीड यू आर अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेस ऑफ मनभावन स्कूल, यू डिडंट इंक्लूड माय ईमेल डिस्पाइट माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ भारत भूषण जी, व्हेन डिड आई सी योर ईमेल, मैंने देखा ही नहीं। देखिए इन्होंने लिखा, नमस्कार, एक ज्योतिषी से मैंने पूछा कि आपके पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र या टोटका है जिससे मेरा मेल मन भावन में अवश्य शामिल हो जाए। जानती हैं ज्योतिषी ने क्या कहा? उसने कहा कि यदि मेरे पास ये सब होता तो मैं अपना मेल मन भावन में शामिल नहीं करा लेता। क्या बात है, लवली जोक। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, आई रियली लव यू ऑल, पौर संस्कृति पौरुष, मेरी जान हो आप सब। और देखो इतने अब जो है वक्त, कितना जितना भी वक्त बचा है कोशिश कर रही हूं ना सबके ईमेल्स लेने की। बब्बा उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव, सत्यम, ये हमें लिख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, और आदाब मुझे लिख रहे हैं नवी हसन, शहनाज, नवेद, रसीद, सुहेल, है ना। और ये कह रहे हैं कि इनका भी गीत जरूर शामिल करूंगी, चिंता न करो, 4:10 से 4:20 के बीच में शामिल कर लूंगी पक्का। किशोर गुप्ता हमारे साथ है, माहिरा मलिक, रूमी जी प्यार भरा आदाब, बेशुमार मोहब्बत, क्या बात है। इनके साथ में आयशा, जोशा, जैनब है, ठीक है। और मुझे क्या करना था, और किसका ईमेल आया था, दिग्दर्शन गौर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर खिल्लू परवेज ये लिखते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ, जी हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और प्रॉमिस करती हूँ आपको, गुम है किसी के प्यार में अभी आप सुनेंगे 4:10 पे पक्का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉरस्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा,

0: आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में यह पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ का उनका स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ ट्रेडोस अगनोम ग्रेब्रिसस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की और साझा प्राथमिकताओं पर WHO के साथ सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए कल रात स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्वास्थ्य सभा का समापन शनिवार को होगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल में राज्य विस्तार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य के महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया गया है। 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्रुप बी पदों के लिए सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा वर्ष अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has concluded his visit to Sweden and arrived in Norway as part of his five-nation tour. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0, and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. The talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's Visit reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honor for foreign heads of government, symbolizing the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. In Norway, Prime Minister Modi will call on the Majesties King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre. He will also address the India-Norway Business and Research Summit. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda met Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, on the sidelines of the 79th World Health Assembly being held at Geneva in Switzerland. The Ministry of Health said Mr. Nadda reaffirmed India's commitment to advancing global health equity, highlighting key initiatives such as the Ayushman Bharat Digital Mission, Ayushman Arogya Mandirs, traditional medicine, AI-driven public health innovations, and sustained efforts towards TB elimination. The minister also underscored the country's role as the pharmacy of the world. During the meeting, DGWHO appreciated India's health sector reforms and leadership in global health partnerships and expressed commitment to further strengthening collaboration with WHO on shared priorities. In Uttar Pradesh, the Yogi Adityanath cabinet today approved the constitution of an OBC commission. The commission's recommendations are a Supreme Court prerequisite for implementing backward class quotas in panchayat elections. The cabinet, under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, today also cleared metro expansions in Agra and Lucknow, a 2,799 crore rupees power grid upgrade in Mirzapur, and 855 crore rupees hospital complex at RML. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi. Mr. Goyal has said that India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. He emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
3: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly and keep bringing new ideas and innovations forward.
2: Congress leader V.D. Satheesan was sworn in as the new Chief Minister of Kerala today at a grand ceremony held at the Central Stadium in Thiruvananthapuram this morning. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Satheesan. A 21-member cabinet took office alongside the Chief Minister. 16 members in the new ministry are becoming ministers for the first time. Immediately following the swearing-in ceremony, the newly formed government convened its first official cabinet meeting today. Defence Minister Rajnath Singh has reached Hanoi, Vietnam this afternoon on a two-nation visit to Vietnam and South Korea. In a social media post, the Defence Minister said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, boosting maritime collaboration and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. India Meteorological Department IMD forecast heat wave to severe heat wave conditions over plains of northwest India and central India for several days during the week. In Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi, heat wave conditions are likely to prevail till Saturday. The weather agency has predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over many parts of northwest parts of the country. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना

देखा। और जब टेलीविज़न के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

0: इस वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए बीई बीटेक सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है, संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त है, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है, जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे सहयोगी हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
4: हेलो प्रियंका।
3: जी हां, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या है खास। इसके अलावा खेल के मैदान की भी हलचल रहेगी, आर्थिक जगत पर भी हम डालेंगे नजर, तो बहुत कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। आगाज करते हैं आज का कार्यक्रम अपने सहयोगी अभिषेक के साथ।
4: यस हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me, of course, today is my co-host Priyanka Arora. Well, listeners, he was an 11th century Persian polymath, famous worldwide for his profound philosophical poetry, pioneering mathematical discoveries.

0: space and highly accurate astronomical calendar. Yes, he's none other than the Persian poet and polymath Omar Khayyam. And today we observe his birth anniversary. We shall talk about him late in the program. But first of all, we start with the news headlines at this hour.
1: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे. श्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर के बीच वार्ता जारी.
0: Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double the trade in the next 5 years.
1: कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
0: West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया.
0: एंड एन आईपीएल क्रिकेट होस्ट चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन सनराइजर्स हैदराबाद दिस इवनिंग. Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Museum Day. Well, Priyanka, International Museum Day has been celebrated today. And this year's theme, Museums Uniting a Divided World, highlights the role of museums in fostering dialogue, understanding, inclusion and peace across cultural, social and geopolitical divides. And the objective of International Museum Day is to raise awareness about the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples.
1: जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में बात करें तो उससे पहले बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं मेरे पास और किसी ने क्या खूब लिखी है कि एक वस्तु जब किसी को अपना हृदय देती है तो जीवन भर के लिए दे देती है. वह अपना शरीर भी उसको करती है समर्पित और इतनी अंतरंग हो जाती है कि सिर्फ उसी को देखकर पहचान लिया जा सकता है आदमी को. पटरियों के किनारे या अनजान सड़कों पर कितनी शिनाख्त वस्तुओं से हुई और वस्तुओं ने लोगों को लावारिस नहीं रहने दिया. कई बार वे कहानियों के सिंहासन की तरह या वरदान में मिली पोशाक की तरह पेश आती हैं. जी हाँ, संग्रहालय में रखी अमूल्य वस्तुएं सदियों पुरानी सभ्यता को सहेजे हुए हैं. महाद्वीपों और पीढ़ियों तक संग्रहालय मानव सभ्यता के निशानों को सहेज कर रखते हैं, अपने साथ यादें, संस्कृति और वे कहानियां लिए हुए जो लगातार इस बात को आकार देती हैं कि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं. हालांकि वे अलग अलग इतिहासों और परंपराओं से गढ़े गए हैं, फिर भी वे ऐसे स्थान बने रहते हैं जहां लोग समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे से रूबरू होते हैं.
0: Yes, Priyanka, and museums are trusted public spaces where people encounter stories, objects and one another. And in times of social fragmentation, polarization and unequal access to knowledge and culture, museums help rebuild connection across generations, across communities and across borders, fostering dialogue, understanding, inclusion and peace within and between communities worldwide.
1: जी, और शुरुआत में जैसे आपने इस बार का जो विषय है बताया है कि संग्रहालय विभाजित दुनिया को जोड़ने वाले, और इस लिहाज से ये विषय बहुत ही सटीक है क्योंकि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों के बीच सेतु का काम करते हैं. ये दुनिया भर के समुदायों के भीतर और उनके बीच संवाद, समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं. सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक दृष्टि से जो मतभेद हैं, ऐसा नहीं है कि संग्रहालय इन्हें एकदम से मिटा देते हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें मतभेदों को समझा जा सके और उनका सम्मान के साथ समाधान किया जा सके. ऐसा वे विरासत और स्मृतियों को सुरक्षित रखकर सीखने और चिंतन के अवसर प्रदान करके तथा ऐसे स्वागत योग्य स्थान उपलब्ध कराकर करते हैं जहां विविध आवाजों को सुना जा सके. खुले और सभी के लिए सुलभ होने के कारण संग्रहालय विविधता और निरंतरता को बढ़ावा देते हैं.
0: Since its inception, Priyanka, UNESCO has recognized museums as one of its most important partners for building peace in the minds of women and men. Today, museums specialize in everything from human ingenuity and cultural expressions to natural heritage. They may be indoors, open air, underwater and virtual, attracting and inspiring millions of visitors each day. And as museum attendance continues to grow around the world, UNESCO is working to link their work with sustainable development and peace building.
1: बिल्कुल सही कहा, और संग्रहालय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि वे सांस्कृतिक मध्यस्थता और संवाद के

0: कार्यालयों की सुरक्षा और संवर्धन, उनकी विविधता तथा समाज में उनकी भूमिका से संबंधित 2015 की यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने के बाद से ये संगठन विशेष रूप से संरक्षण, शिक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मामलों में दुनिया भर की सरकारों, स्थानीय हितधारकों और संग्रहालयों पेशेवरों के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए काम कर रहा है।
1: As part of these efforts, UNESCO established a high-level forum on museums, which met for the first time in Shenzhen, China, in November 2016, and resulted in the adoption of the Shenzhen Declaration, which stresses the importance of museums in reinforcing ethical, professional, and technological standards, preserving heritage in times of peace and conflict, and increasing international cooperation.
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र ने प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्विज, हेरिटेज वॉक, आकाश अवलोकन सत्रों और परिवार उन्मुख विज्ञान गतिविधियों का आयोजन किया है, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है।
1: And the celebration aims to showcase the immense power of museums in shaping an informed, creative and progressive society. Museums and science centers today are not merely places for preserving objects and artifacts. They are vibrant centers of education, innovation, scientific awareness, cultural understanding and community engagement. They inspire curiosity, encourage lifelong learning and connect people with science, heritage, history and sustainability through interactive and meaningful experiences. And the special attraction of this year's celebration is the exhibition, My Own Collection, showcasing rare and fascinating historical objects along with unique personal collections, reflecting the richness of India's cultural and scientific heritage.
0: सही कहा आपने अभिषेक, इस अवसर पर पणजी स्थित गोवा विज्ञान केंद्र ने गोवा सरकार के संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिनमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने में संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित किया गया। और इन समारोहों के एक हिस्से के रूप में माय ओन कलेक्शन यानी मेरा अपना संग्रह शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गोवा के विभिन्न हिस्सों से 25 लोग अपने अनूठे संग्रह प्रदर्शित कर रहे हैं। इन में सिक्के, डाक टिकट और जीवाश्म कलाकृतियां, खिलौने, पुरानी वस्तुएं, दुर्लभ पुस्तकें और अन्य वस्तुएं शामिल की गई हैं।
1: एंड एज द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल म्यूजियम डे टुडे, टू अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन आवर लाइव्स, लेट अस गो टू मुंबई एंड एक्सप्लोर अ म्यूजियम व्हिच नॉट ओनली ऑफर्स एन आइकॉनिक कलेक्शन ऑफ वेयर वी केम फ्रॉम but also shows us how brilliantly an architect can bring together different styles of architecture to create a marvelous structure. We have more from a Mumbai correspondent.
2: Standing in the bustling streets near the Shyama Prasad Mukherjee Chowk in Mumbai, one simply can't help but take a second glance at the iconic building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which partially resembles the Taj Mahal in Agra, Gol Gumbaz in Vijaypura, and fort-like structures serving as reminders of Maratha forts. Considered the biggest museum in the financial capital of India, it not only offers an intricate tour of our past, but the museum itself has a story in store for us. Let's listen to archaeologist and historian Ruta Vaghmare Baptista.
3: Situated on the southern tip of Mumbai, on the Crescent site, the museum was founded in 1905 by prominent citizens of the city with the help of the government to commemorate the visit of the Prince of Wales, who later becomes George V, Emperor of United Kingdom. The museum building was finally completed in 1915, but was used as a children's welfare center and a military hospital during the First World War before being handed over to the committee in 1920. The museum was inaugurated on 10 January 1922 by Lady Lloyd, was the wife of George Lloyd, former governor of Bombay.
2: A part of the Gothic and Art Deco ensemble, which is one of UNESCO's World Heritage Sites, let's learn how the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya presents a fine example of a blend of multiple architectural styles from Ruta Vaghmare Baptista. As the famous quote goes, every step in a museum is a dance with history. Places like Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya offer history lovers and commoners a place, inspiration and passion to enjoy every bit of it. This is Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
0: जी हाँ, हमने मुंबई के छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के बारे में जाना अपनी संवाददाता से। इसके अलावा हमारे देश में ढेर सारे संग्रहालय हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली जो भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक की दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। अगर बात करें इंडियन म्यूजियम कोलकाता की, जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक संग्रहालय

0: माना जाता है। या अगर आप राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन और लोक संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो अरणा झरना द डेजर्ट म्यूजियम ऑफ राजस्थान आप देख सकते हैं। इसके अलावा श्रेयस फोक म्यूजियम है गुजरात में। और अगर 1947 के भारत विभाजन की जो दर्दनाक यादों को संजोए है अमृतसर का एक संग्रहालय, अगर आप जाते हैं द पार्टीशन म्यूजियम, उसको देखना बहुत ही बेहद भावुक अनुभव रहता है। तो अभिषेक, गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो देश की विविध सांस्कृतिक विरासत कैसी है, तो संग्रहालय बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं।
1: Absolutely, I completely agree with you. It would be a very enriching vacation for them.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये देखने का कि उनके पास क्या है विशेष। सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए महत्वाकांक्षी द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। क्या है ये योजना और कैसे ये महिलाओं को लाभान्वित करेगी, इस पर खास रिपोर्ट है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की, आइए सुनते हैं।
2: दीप्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी यानी ऊर्जा सखी का एक विशेष समूह तैयार किया जाएगा। चुनी गई महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं गांवों में सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई प्रणाली और अन्य सौर उपकरणों का संचालन करेंगी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर जिले के कुछ समूह पहले ही अधिकृत विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। योजना में पे पर यूज और पे एज यू गो जैसी व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। बिहार नेटवर्क के जरिए लागू होने वाली इस योजना में लगभग 270,000 स्व सहायता समूहों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और इस बदलाव का नेतृत्व सोलर दीदियां करें। दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ को महिला नेतृत्व आधारित हरित विकास मॉडल के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: Yes, and from Raipur, we now go over to the sun-kissed, picturesque beaches of Goa. And the Goa government is taking steps to strengthen tourism infrastructure and improve facilities at popular tourist destinations across the state. And Tourism Minister Rohan Khonte reviewed the proposed development works at Kelsi and Benolim beaches in South Goa. And the plans include pedestrian, walkways, beautification projects, public toilets and other tourism-related facilities. We have a report.
3: The Goa government is focusing on improving tourism infrastructure to provide better experiences for visitors and support local communities dependent on tourism. As part of these efforts, development plans have been proposed for Kelsi and Benolim beaches in South Goa. The projects include construction of pedestrian walkways, beautification of beach areas, improved public sanitation facilities, and other amenities for tourists. In a media interaction, Tourism Minister Rohan Khonte said that,
4: although this is one of the premier destinations of tourism, certain elements need to be added. The Department of Tourism or Director Bab Kedar Naik has already initiated a lot of things which we have already spoken with the plan. Certain things from him in terms of improvised infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, our team has noted it, try and implement most of these issues.
3: The minister also interacted with fishermen, water sports operators and shack owners regarding tourism related activities, cleanliness and the livelihood of local communities connected to tourism sector. The Goa government has reiterated its commitment to developing beaches and tourism destination while ensuring better infrastructure and sustainable growth for the tourism industry. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
0: बिल्कुल अभिषेक, जो गोवा है वो पर्यटन के लिहाज से सबसे पसंदीदा स्थल है, ना केवल देशवासियों के लिए बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उन्हीं के लिए भी बहुत ही।
1: इट्स नॉट ओनली वेरी पॉपुलर domestic tourist hotspot, but also a very equally enchanting place for international tourists also.
0: बिल्कुल, और अगर ऐसे काम कर रहे हैं पर्यटन जो अवसंरचना को मजबूत करने के लिए जो काम हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है. और एक और सराहनीय कदम हो रहा है

0: बॉलीवुड में माँ के किरदार में कई अदाकाराओं ने अपनी खास जगह बनाई है, जैसे निरुपा राय, ललिता पवार और सुषमा सेठ। और इसी फहरिस्त में एक और लोकप्रिय नाम है, रीमा लागू का। जी हाँ, आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। फिल्म मैंने प्यार किया की सपोर्टिव माँ हो या वास्तव की कठोर माँ या फिर ये दिल्लगी की माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की जो माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। उन्हीं की फिल्म मैंने प्यार किया का ये बहुत ही प्यारा डायलॉग सुनते हैं।
1: सुमन जरा चल तो।
2: कहाँ आंटी जी?
1: चल जरा प्रेम से उसकी शादी की बात कराए।
2: जी जी
1: हाँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू ले आओ। चल आजा।
2: जी
1: आजा। प्रेम।
3: हाय माँ।
1: दफ्तर जा रहा है बेटे?
3: हाँ, क्यों?
1: कुछ नहीं, नाश्ता कर ले और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ।
3: श्योर माँ।
1: आओ, क्या हुआ?
3: ना, कुछ भी तो नहीं।
1: प्रेम, हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं।
3: शादी?
1: हाँ, तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने।
0: जी हाँ, उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में उनकी माँ की भूमिका निभाई और ऐसी मैंने प्यार किया थी और एक इसके अलावा एक फिल्म और थी, उसी की फिल्म का एक आपका डायलॉग सुनते हैं। हम आपके हैं कौन? और समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका और अभिषेक को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. In Norway, Prime Minister Modi held bilateral talks with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre in Oslo a short while ago. Both leaders addressed the gathering after conclusion of their talks. Prime Minister Modi said India-Norway trade ties are strong and promising.
1: Norway ki yatra karke mujhe bahut khushi ho rahi hai. Yeh desh nature aur human progress ke beech harmony ka एक सुंदर उदाहरण है. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.
2: And now we go live to the Prime Minister's address there.
1: Partnership ka naya adhyay likhe. Aapka bahut bahut dhanyawad.
2: Our Prime Minister just ended the address. Moving on, Defence Minister Rajnath Singh has reached Hanoi in Vietnam this afternoon. He is on a two-nation visit to Vietnam and South Korea. In a social media post, the Prime Minister said that he is looking forward to visiting the Asian nations to further expand the scope of bilateral engagement. He said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, boosting maritime collaboration and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi. Mr. Goyal said that India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. He emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
3: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly and keep bringing new ideas and innovations forward.
2: The government has said that refineries in the country are operating normally and India has sufficient crude inventories despite the import disruption due to the ongoing West Asia crisis. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said the country has sufficient stock of petrol, diesel, LPG and natural gas.
4: 1.72 crore LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. This whatever waiver or no waiver, it will not affect our supplies and all efforts have been taken to that effect.
2: The West Bengal government has constituted two inquiry commissions to investigate alleged institutional corruption and atrocities against women in line with its election promises. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced the decision today after approval by the state cabinet. Retired Calcutta High Court Justice Biswajit Basu will head the commission probing institutional corruption. Senior IPS officer K. Jayaraman of ADG rank has been appointed the member secretary. The IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over plains of northwest India and central India for several days during the week. And in IPL cricket, host Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at 7:30 p.m. this evening. In the latest standing, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points, having registered 6 wins this season and remain in contention for a top 4 finish. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.9 MHz कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों में जैसे ही शाम ढलती है, शाम की ओर बढ़ते हैं हम, तो मूड अपने आप बेहतर होता जाता है, बेहतर से बेहतरीन होता जाता है ना। शामें आजकल कितनी सुहानी होती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शाम को जाएं अपने साथ, भाई अपने साथ अपने आप को भी ले जा सकते हैं, और दोस्त हो तो क्या बात है, साथ में मिलके कॉफ़ी पिएं, बातें करें, हंसें और हंसाएं, गाएं और गवाएं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर गाते गुनगुनाते में आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप और ये प्यार भरी शाम आपके नाम मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। जी हाँ, मोहब्बत जबान से बयां होती है, दिल की जुबान नहीं होती, आंखों से ही उल्फत टपकती है। लव इज कम्फर्ट, चैन मिलता है ना। और लव में दूसरा व्यक्ति, दूसरा सामने वाला, द ऑब्जेक्ट ऑफ आर इंटरेस्ट, वो कुछ भी कर ले, जितने भी सितम ढाले, वो भी मीठा मीठा दर्द, कहते हैं ना प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, क्या कमाल की बात है। सिर्फ एक इमोशन जिंदगी का पूरा नजरिया बदल देती है। और फिर कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब कुछ प्यारा प्यारा मीठा मीठा गुलाबी गुलाबी सी लगने लगती है दुनिया, है ना।

यूं ही ये सफर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, है ना। और हमारा दिमाग कितने कमाल का ऑर्गन है, नहीं और क्या, जो ब्रेन है हमारा, वो जब से हम पैदा होते हैं तब से वो काम करना शुरू करता है करता है करता है करता है, तब तक जिस दिन हम किसी के प्यार में नहीं पड़ जाते है ना, उसके बाद क्या होता है, ठप दिमाग बंद हो जाता है सचमुच में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त दिमाग का नहीं दिल का खेल शुरू होता है। दिल दिल दिल विल, दिल के बाद बिल की बारी आती है, पर वो बातें होंगी इस गीत के उस पार। बड़ा ही प्यारा गीत, हाय हाय, टोटली रोमांटिक, थोड़ा सा रूमानी हुआ जाए। रूमी मलिक के साथ हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गाते गुनगुनाते।

0: सवाल कोई भी हो, उसका जवाब प्यार है।
1: हाय हाय, सच्ची सच्ची, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और प्यार में तकरार है, मीठी मीठी छेड़छाड़ है, पर बड़ा ही मजा है सचमुच ये शय जो प्यार है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

गाते गुनगुनाते गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते में ये सफर चलता रहे। लेकिन आपको एक बात बताएं, जिंदगी में बहुत सारा वक्त इस ऐसे गुजर जाता है जब हम दूसरों से लग जाते हैं कंपटीशन करने के लिए, है ना। ये एक बड़ा ही खराब वक्त होता है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप देखो, आप दूसरे को अगर झुकाओगे ना तो आप खुद भी झुकोगे ना उसे नीचे झुकाने के लिए। आप अपने आप को क्यों नहीं ऊपर बढ़ाते, ऊंचा करते? तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट माई डार्लिंग्स मेरी जान सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने पे काम करना है ना। और फिर जो है आप देखें जरा किसमें कितना है दम, अरे वो तो कायनात दिखाएगी। बिल्कुल, जो काबिल है मित्रों, ये जान के ये जान लो, ये परम सत्य अटल सत्य है, आपकी काबिलियत जो है ना वो सामने आएगी। सूरज जब उगता है तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती सुबह हो गई क्योंकि सूरज चमका है, ऐसा नहीं है। सूरज ही पर्याय है सुबह का, तो सूरज बनो, है ना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर गाते गुनगुनाते से सुन रहे हैं आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। और दुआ भी जो है वो कितनी कमाल की चीज है ना कि सर जमीन पे झुकता है और दुआ आसमान में कबूल होती है। तो सर तो झुका के ही रखना चाहिए, ऑलवेज बी हम्बल। विनम्रता जो है बहुत ही सुंदर गुण है, सबको अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम रूमी मलिक अपनी वाणी को विराम देते हैं। आखिरी पेशकश सुनिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।
2: ओहो, अरे कोई सास तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
3: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
2: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
0: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने

सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

अभी आपने जहरीला इंसान से ये गीत सुना किशोर जी की आवाज़ में, और अभी एक और बेहतरीन सा गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। और ये जो नगमे होते हैं ना, ये हमारे जज्बातों को उस रंग में पिरो देते हैं, उस रंग में हमारे भावों को उड़ेर देते हैं जिन्हें शायद हम अपनी जुबान में नहीं कह पाते।

0: उन्होंने भी पाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एमए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधि स्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप

0: अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। आग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर्स उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सदीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्रीसतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह 21 सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धं अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्य मंत्रिमंडलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमित शाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानां आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं शुभारंभं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थं अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन्नवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहश्च उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिक स्थिति विषये अद्य नवदिल्ली नगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्त भण्डारम् अस्ति इति।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरंगस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्त

0: यां अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्ष संसर्गात् निवारणं विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्श पत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेद सिद्ध योग यूनानी होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
1: भारत का बना हुआ सामान भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देशस्य जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायामस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंह वियतनाम देशस्य राष्ट्रीय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एमए चिदम्बरम् क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 वादने भविष्यति इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं श्रोताओं आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं वो इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे तो श्रोताओं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार दीपशिखा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन
2: धन्यवाद
1: चर्चा आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं दीपशिखा हमारे साथ हैं लेकिन उससे पहले आइए सुनते

0: सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। तो श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: चर्चा आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, दीपशिखा हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं हेडलाइंस।
2: Indian stock market Sensex ends with marginal gains. Nifty closes flat. Major Asian indices display mixed trend. And India aims to achieve $1 trillion export in current financial year, says Commerce Minister Piyush Goyal.
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में मामूली बढ़त, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सपाट बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख नजर आया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत का लक्ष्य $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है।
2: Before we proceed any further, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि आज हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया पूरे दिन के अंतराल में। तो घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले, आधे सत्र तक दोनों सूचकांक दबाव में रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें सुधार नजर आया। सत्र के दौरान रिकवरी भी हुई और अंततः बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1100 अंकों से अधिक का उछाल आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मुनाफा वसूली के कारण 300 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 75,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,650 पर आ गया। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। मिड कैप 100 0.1% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 में लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई।
2: So benchmark domestic equity indices recovered from early losses and ended marginally higher today. The Sensex rebounded over 1100 points, while the Nifty recovered more than 300 points from the day's lows on value buying. The Bombay Stock Exchange Sensex added 77 points to close at 75,315, while the National Stock Exchange Nifty rose slightly by 6 points to settle at 23,650. However, the broader market on the National Stock Exchange ended lower. The mid-cap 100 dipped over 0.1%, while the small-cap 100 lost almost 1.3%. Earlier, the markets opened with steep losses following weak global cues. Both indices remained under pressure during the first half of the session before gradually trimming their losses.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में टेक महिंद्रा लगभग 4.5%, इन्फोसिस 2% से अधिक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में लगभग 1.8% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो टाटा स्टील 3.2%, पावर ग्रिड 3% से अधिक और SBI के शेयरों में लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई।
2: And in the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 20 out of 25 sectors ended in the negative territory. Among the top losers, PSU Bank shed 1.8%, auto lost over 1.7% and consumer discretionary dropped almost 1.3%. In the top gainers, focused IT rose over 2.5%, IT climbed more than 1.9% and healthcare added 0.2%. Overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 3,034 companies declined, 1,264 advanced and 194 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 38 पैसे कमजोर होकर 96.35 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.21 पर चल रहा था। दीपशिखा, जिस तरीके से बाजार की गतिविधियां जो कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से इतनी ज्यादा प्रभावित है बढ़ रही है, इसे आप अब क्या अवलोकन करती है? आने वाले समय में बाजार की दशा और दिशा किस तरफ रहेगी?
1: देखिए, इस समय जो स्थिति है बाजार की, तो भारतीय बाजार को हम देखें तो 3-4 मुख्य जो फैक्टर्स हैं, एक तो तेल, क्रूड ऑयल

किस दिशा में जा रहा है, रुपया किस दिशा में जा रहा है, मॉनसून की दशा कैसी रहेगी, अगर मैं आपसे बोरो करती हूँ, तो ये तीन प्रमुख फैक्टर्स हैं। दूसरा कि विदेशी निवेश कितना आ रहा है, इनफ्लोज कितने आ रहे हैं, बहुत, और वो ये जो इसमें से फैक्टर्स हैं जैसे तेल हो गया या विदेशी निवेश कितना आ रहा है, रुपया जो है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनके तार जुड़े हुए हैं। जो इस समय संकट है वेस्ट एशिया में, जो लड़ाई चल रही है जिसमें बहुत अनिश्चितता बनी हुई है कि किस दिशा में वो जाएगी, वहाँ कुछ युद्ध विराम अभी चल रहा है, बहुत एक्टिव लड़ाई नहीं हुई है कल की बमबारी के बाद, लेकिन

0: होती है, बढ़ती है, जताई जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो इस मार्केट को ड्राइव करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का इस दिशा में कैसा परफॉर्मेंस रहता है? क्योंकि मानसून को लेके भी थोड़ी अनिश्चितता आ गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ये जो है ये ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है, जो जियोपॉलिटिकल संकट है, ये जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता है, यहाँ पर कोई समझौता नहीं होता है, तब तक ये अनिश्चितता, उतार चढ़ाव ये बना रहेगा।
1: Well, Deepshikha, you mentioned about the West Asian crisis, geopolitical situation, so on and so forth. Now, if we look at the Trump visit to China, there was really, the world all over, all the economies were really looking forward to the visit. Something might come out of it, as we are given to understand that China mostly was kind of sitting on the sidelines, if you can say, in the West Asian crisis, also with the
0: Yes, absolutely quiet.
1: Russia-Ukraine conflict as well. Now, with almost nothing coming out of the Trump visit to China, we saw that it was mostly an exercise in futility, if you can say that. So, does that also have a role to play in the tepid market kind of movements that we saw over the past three, four sessions? Now, of course, today there was just very marginal uptick. So, is that a factor at all?
2: निश्चित, दीपशिखा के पास हम लौटेंगे इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार सभी को।
0: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न
0: जी,
3: ये है कि अभी जो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन चुके थे और हम जापान को ही बीट करने वाले थे, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले थे, बट सर मैडम कि अभी हम दोबारा से सिक्स पोजिशन पे आ गए हैं, तो ये हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं फोर्थ पे, और हम फिर 2047 तक विकसित डेवलप कंट्री कैसे बन सकते हैं? धन्यवाद।
0: अमित जी, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, इस समय देश के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियों से अगर देश उबर पाता है और अपनी विकास दर को गति दे पाता है, तो हम जरूर 2047 में विकसित देश बन पाएंगे।
2: बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ, गुड इवनिंग मैम।
2: गुड इवनिंग।
4: हेलो
0: जी अनिल जी।
4: हेलो
0: जी अनिल जी, नमस्कार, बताइए आपका सवाल।
4: मैम, मेरा सवाल ये है। हेलो हेलो
2: जी
0: जी,
2: आपकी आवाज पर्याप्त आ रही है, अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ मैडम, मैडम मेरा 28 फरवरी को जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर।
1: अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, एक मिनट, आप थोड़ा अपना रेडियो अगर आपने ऑन कर रखा है तो उसे आप या तो बंद कर दें या वॉल्यूम कम करें उसका।
4: मेरी एक जीवन, हेलो, अब आवाज आ रही है आपको?
1: जी जी
0: जी,
1: हाँ,
0: जी,
1: बताएं।
4: अब आवाज आ रही है आपको?
0: हाँ जी, हाँ जी, आप पूछें अपना
4: मैडम।
0: सवाल।
4: 28 फरवरी को जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर हुई थी, जिसमें मुझे अराउंड 20 लाख मिला था, और मैं सोच रहा था कि उसको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डालूं, लेकिन उसी समय वॉर हो गया, तो मैंने उसको जो है सीनियर सिटीजन 64 ईयर, तो उसको सीनियर सिटीजन में डिपॉजिट कर दिया, जिसमें मुझे 8.2% आता है, और जो उसका 15,000 या 14,000 क्वार्टरली आता है, उसको मैं म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या ये पॉलिसी ठीक रहेगी?
0: आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया अनिल जी, क्योंकि काफी अनिश्चितता बनी हुई थी बाजार में। आपने एक रिस्क ना लेकर के एक जो सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी योजना चल रही है, जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है, उसमें आपने निवेश किया, तो एक सूझबूझपूर्ण निर्णय था आपका।
2: लौटते हैं निश्चित आपके सवाल पर, आप पूछ रहे थे।
1: Yes, Deepshikha, we are talking of the Trump visit to China, as we are given to understand that everybody, right from India to the Asian economies to the European economies and of course the US economy as well, they were looking forward to something coming out of it, especially given the West Asian crisis happening right now. And of course, for the past 3-4 years now, it's for the fourth year running, I guess, with the Ukraine Russia conflict also happening. Now with the closure of Strait of Hormuz and all, so on and so forth, we have seen how it has crippled the world economy. Now, with nothing, almost nothing coming out of the Trump visit, it almost seems like it was a you know, kind of a pleasure trip happening over there. So
0: Nishit, you have to see this engagement or this visit in the backdrop of the developments that happened.

0: If you see the frostiness that had developed, the kind of tensions that were there between the two nations, they were exchanging, a lot of harsh words. So, in that scenario, a visit definitely tries to overcome that mistrust and, that.
1: Which was very much palpable, actually, Deepshikha. If you look at the, you talk of
0: Exactly.
1: mistrust
0: So
1: and
0: the fact is
1: trust
0: that a
1: issues.
0: presidential visit has happened. There was a summit between the two leaders. Probably we could see, movement in their engagement, movement in their relationship going forward, because US-China, they have a deeper engagement at different levels because of trade, because of investment, a lot of American companies are present in China. So I think this visit was important from that perspective. But of course, I think everyone in the world had a lot of expectations from the visit, which of course did not come true, or which did not sort of come about, and which is why I think there is a disappointment that nothing concrete
1: We'll
0: happened.
1: come back to that, and in the meanwhile, we are joined in by Rajesh from Delhi. Rajesh.
2: मार्केट मंत्रालय जी, नमस्कार जी। ये 6 महीने से करीब आईटी सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उभर पाएगा कि नहीं आने वाले समय में?
0: नमस्कार राजेश जी, आपका सवाल जो है वो आज काफी निवेशकों के मन में है, और बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके मन
3: बिल्कुल
0: में है।
3: बिल्कुल
0: इस क्षेत्र का परफॉर्मेंस जो है, अगर आप देखें, और दुनिया भर में इसकी बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे यूएस में वहां पर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, वहां पे जो जो भी आईटी या टेक क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, उनके वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है स्टॉक मार्केट्स में बहुत बढ़िया है। हमारी कंपनियों ने भी शुरू किया है, लेकिन अभी वो काफी पीछे हैं इसमें, अभी उनको उस स्तर तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और वही निर्भर करेगा आगे की ये ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। तो उनका परफॉर्मेंस आगे इस क्षेत्र का काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम एआई का एडाप्टेशन जो है हमारे यहाँ किस हद तक होता है, और टेक कंपनियां किस कितना उसमें घुस पाती हैं।
3: मुंबई से हमारे साथ हसमुख जुड़ रहे हैं। हसमुख जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: या नमस्ते मार्केट मंत्र।
3: नमस्कार
0: नमस्कार आसमान जी।
2: मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ से अगर 1 साल के लिए होराइजन के ऊपर इंडिया में कौन से सेक्टर्स ग्रो कर पाएंगे आपके हिसाब से? बिकॉज अभी आपने आईटी के बारे में बताया, तो वहाँ एआई का फियर है,
3: मौलिक सवाल
2: डॉलर्स का, वी ऑल नो व्हाट हैज हैपन,
0: जी।
2: सो व्हाट आर योर व्यूज, व्हिच सेक्टर्स वी शुड चूज?
0: हसमुख जी, देखिए, कुछ एक क्षेत्र हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, जैसे कि कमोडिटी साइकिल अगर आप देखें तो वो ऊपर जा रहा है, तो कमोडिटी क्षेत्र जो है, मेटल की डिमांड जो है सब जगह बहुत बढ़ रही है, उससे जुड़े क्षेत्र, डिफेंस से जुड़े क्षेत्र, क्योंकि लड़ाई चल रही है अब सब जगह जो है, एक डिफेंस के जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी हुई कंपनीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर होगी। बैंकिंग का क्षेत्र, उसमें क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने की बात है, हालांकि ये बहुत जल्द नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, हो सकता है कि कुछ समय में, मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो, और बैंकिंग क्षेत्र ने अपने एनपीएस पर काफी हद तक काबू पा लिया, तो उनका परफॉर्मेंस, उस क्षेत्र का परफॉर्मेंस भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर हो।
1: इनफैक्ट इफ आई मे ऐड टू दैट दीप शिखा, द फार्मा सेक्टर, वी मस्ट नॉट
0: फॉरगेट, ऑफ कोर्स फार्मा सेक्टर,
1: विद द ग्रोइंग स्ट्रेन्स दैट वी आर सीइंग द वर्ल्ड ओवर, वी सॉ व्हाट हैपेंड इन अफ्रीका एंड ऑल्सो मेनी अदर काइंड ऑफ विच आर डिट्रीमेंटल टू हेल्थ कमिंग अप, लाइक बिग, सो फार्मा सेक्टर अनदर वन,
0: फार्मा सेक्टर इज अनदर वन टू वॉच आउट फॉर।
1: अमित, अमित फ्रॉम मुंबई, अमित वेलकम।
4: थैंक यू सर। सर मेरा सवाल था एक्सपर्ट से कि अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल माहौल है,
2: और इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने जो आह्वान किया है सब हमारे देशवासियों को भी गहना मत खरीदो वगैरह और कुछ हम करोड़ों अमाउंट जो है इंटरनेशनल मार्केट उन्होंने हमारे यहाँ से विड्रॉ की है मार्केट से शेयर मार्केट से, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा, आपका इसमें अपनी ओपिनियन क्या है बताइए। थैंक यू
0: अमित जी। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है क्योंकि देश के सामने एक हम सोना हमारे यहाँ पर नहीं होता है माइन, हम बाहर से उसको आयात करते हैं, कच्चा तेल हम आयात करते हैं और हमारे सामने जो है एक समस्या है क्योंकि तेल का दाम बहुत बढ़ गया है, हम उसके लिए फॉरेक्स इस्तेमाल करें, तो प्रधानमंत्री का आह्वान इस दिशा में था। और जो इस समय वैश्विक स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर प्रेशर है, हमारे देश की भी स्टॉक मार्केट पर प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है बहुत ही सिलेक्ट निवेश करना पड़ेगा कि जो आपको आगे रिटर्न्स भी दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे कीमत पर क्योंकि वैल्यूएशंस गिर गए हैं वो अभी हैं मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो मजबूत कंपनियां हो, बैलेंस शीट उनकी मजबूत हो और जो क्षेत्र आपको लगते हैं कि जो आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म जो है आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, आप वो शेयर्स ढूंढिए और उनमें निवेश कीजिए।
3: बिल्कुल श्रोताओं, दीपशिखा जी की राय महत्वपूर्ण है और हम अब आगे बढ़ते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख देखा गया। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.1% नीचे बंद हुआ, जापान का निकी 1% गिरा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% बढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में 0.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी के कारण निवेशकों की चाल में जरा सतर्कता नजर आई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें तो आज यहां भी मिश्रित रुझान ही देखने को मिला। लंदन का फुटसी लगभग 0.4% ऊपर, जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा जबकि फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% से अधिक गिरकर कारोबार करता नजर आया।
1: एंड इन सम अदर न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जोनास गार स्टो held restricted and delegation level talks in Oslo today. In a joint statement, the two leaders declared the upgradation of India-Norway relations to green strategic partnership.
4: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Both leaders also emphasized expanding collaboration in high technology, artificial intelligence and startups to make the partnership future ready. Prime Minister Modi said that India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, which came into effect last year, serves as a blueprint for shared progress and prosperity between India and Norway.
3: श्रोताओं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टर्सन से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
5: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: और ताल के शहर से भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैडम, मेरा सवाल है, ये हमारा इंटरेस्ट वेस्टर्न इकोनॉमीज और अमेरिकन इकोनॉमीज में ज्यादा है क्योंकि हमें वहीं से टेक्नोलॉजी और कैपिटल मिलती है, और हमारे दिक्कत ये हो रही है कि हमारे FII सब निकले जा रहे हैं, तो उनको लुभाने के लिए भी क्या किया जा सकता है सो दैट इट स्टेबिलाईज द मार्केट, बिकॉज अवर इंटरेस्ट लाइज नॉट इन डिक्टेटोरियल कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज बट इन द वेस्ट economies which has more benefit for us. क्या लोग हमने काम किया जा सकते हैं उनके आने के लिए? थैंक यू।
0: शंकर जी, विदेशी निवेश जो है हमने देखा है बाजार में काफी हद तक उस पर असर आया है क्योंकि वैश्विक संकट ये जो मंडरा रहा है हमारे सामने, और उस पर सरकार जो है काफी काम कर रही है। हमने देखा है पिछले समय में भी मार्केट रेगुलेटर द्वारा भी फ्रेमवर्क जो है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफी चीजें की गई, तो सरकार बराबर नजर बनाए हुए है और रुपए पर भी नजर बनाए हुए रिजर्व बैंक, और उसके लिए काफी जो है पॉलिसी मेकर्स ध्यान रख रहे हैं, मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि देश में भारत से ज्यादा जो है विदेशी निवेश आए बाजार में भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी।
3: और कुछ खबरों में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का लक्ष्य सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है और अगले 5 साल में इसे $2 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल का निर्यात लगभग $863 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5% ज्यादा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें।
1: Deepshikha, coming back to Prime Minister's visit to the Nordic countries, 5-nation tour, of course, you know, talking of the third and fourth leg, that is Sweden and Norway today. We just heard what he addressed in that presser in Norway. How significant do you feel or do you see this visit as, given the uncertainties and the crisis that you know, of course, not just India but the world economy is facing? That is one. And of course, with the agreement signed and India kind of elevating its partnership, especially with Sweden, to a strategic level, and also with Norway to the green strategic level. Now, how important and significant do you feel this agreement? Of course, that is one, and the tour of Prime Minister to the 5 nations in all.
0: If you look at this tour, and there's been wider discussion on why did Prime Minister travel despite sort of giving this clarion call that people should not travel abroad, but if you look at the selection of countries, even to UAE, yes, he's secured an agreement there for definite supply. He is in Norway today. Norway has world's largest
1: abundant, yes,
0: sovereign wealth fund. We have to encourage foreign investment in the country. So I'm sure the whole idea is to encourage foreign flows, to ensure deeper markets for our exports, and technology for our companies and manufacturers. So he's gone and he's in fact in his address, if you see, he's spoken about these things. It has been a very, very focused visit.
1: Absolutely.
0: So it has to be seen from that.
1: Even as you mentioned this, you know, the agreement between India and Norway, and you know, Prime Minister in his statement in the press has said that 100 billions of investment, 100 billion investment would be coming in the coming days, and 1 million jobs would be created, you know, over the coming years.
0: You know, it's I think we just have to see the results of this visit unfold in coming days.
1: Moving on to crude now, the global crude oil prices rose today. The Brent crude was trading 1.2% up and

0: $110.57 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading over 1.2% up at $106.73 per barrel when reports last came in. And onto the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 1,59,620 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.9% higher at 2,74,250 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.3% badhkar 1,59,050 rupees prati 10 gram par tha, aur July anubandh wali chandi 1.6% ghatkar 2,76,278 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. दीपशिखा, एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर आपसे चाहूंगी.
2: देखिए, सोना और चांदी हमने देखा है पिछले वर्ष काफी उतार चढ़ाव रहा है, गिरा भी था उसके बाद.
1: निवेशकों को कहना है कि चढ़ाव ज्यादा रहा है.
2: चढ़ाव तो रहा ही है, गिराव आया था, लेकिन यही है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सोना तो एज एक निवेशक के बतौर रहना चाहिए.
1: क्या ये सही समय है?
2: सही समय तो प्राइस को देखने के लिए, क्योंकि अभी प्राइसेस ऊपर ही चल रहे हैं.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए.
2: धन्यवाद.
0: थैंक यू दीपशिखा. बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. In the Indian stock market, Sensex ends with marginal gains. Nifty closes flat. Major Asian indices display mixed trend. And India aims to achieve $1 trillion exports in the current financial year, says Commerce Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन

0: ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi held restricted and delegation-level talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in several areas. In a joint press statement, Prime Minister Modi said, "The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity."
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister also welcomed Norway's decision to join the Indo-Pacific Oceans Initiative. Prime Minister Gahr Støre conveyed strong support for India's and the global fight against terrorism. The leaders also agreed to enhance cooperation in multilateral fora. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said that discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0, and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. Talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's tour reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. The BJP has said that it is a matter of immense pride for every Indian that Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the Sweden's highest honour for a head of government.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर

0: स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहाँ समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
2: जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में हैं, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले दो देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडार होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी, उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है, वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग, सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो हैं, वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं, तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है, और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
2: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है, कोर, वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं। इसीलिए

0: व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय संघ के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए, और उसी तरीके से 20 साल के करीब हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया। और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में, और उसके बाद यूके के साथ किया, और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर लिए हैं। तो ये खासतौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी।
1: जी
0: तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है,
1: जी
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो उस और भी संभावनाएं उनको लगती हैं कि भारत की जो मार्केट है, खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर भी वो काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और
1: जी
0: वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां पे।
1: जी जी प्रोफेसर देवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है, काफी लंबा। लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है और प्लस के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो 3 देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो यूरोप को अच्छी तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सांस झले का। सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार। और आइए प्रोग्राम का आगाज इस बेहतरीन से गीत के साथ करते हैं, जिसमें इस गर्मी से राहत पाने की एक आशा दिखती है।

0: जी हाँ, ये जो गीत अभी आपने सुना मेरा गांव मेरा देश फिल्म से था, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की थी। अच्छा लगा ना? कम से कम ख्यालों में तो वो ऐसा लगा कि बरसात हो रही है और पानी बरस रहा है और थोड़ी सी ठंडक दिमागी तौर से तो ज़रूर इस गीत ने आप तक पहुंचाई होगी। फिलहाल एक और बेहतरीन सा गीत आप सभी के लिए फिल्म 10 नंबरी से।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं साथ झले विमलेश के साथ। और अब ये जो गीत अब आप सुनेंगे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा और इस गीत के साथ मैं विमलेश आपको छोड़े चाहती हूँ और फिलहाल के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और DTC बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत मेट्रो मंडे पहल शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो प्रत्येक सोमवार निजी वाहनों के स्थान पर मेट्रो को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 24 अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि यह निर्णय मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा दक्षता, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम DTC की बस से अपने कार्यालय पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क, स्वच्छ स्टेशन, समयबद्ध सेवा और सहज कनेक्टिविटी वास्तव में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि DTC की इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक, सुरक्षित और वातानुकूलित हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जहां संभव हो मेट्रो, DTC बसों और कार पूलिंग को अपनाकर मेरा भारत मेरा योगदान जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
6: दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

0: ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने और ईंधन की खपत कम करने के उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश पुलिस आयुक्त कार्यालय ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। इसके अनुसार दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को अनावश्यक आवागमन रोकने, उपलब्ध वाहनों का अधिकतम उपयोग करने और ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है ताकि ईंधन संरक्षण और अनावश्यक व्यय में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में सार्थक योगदान दिया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण अनुकूल विकास शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज सुबह दीपक सिंगला और अन्य हवाला संचालकों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन के हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। इसके अलावा दीपक सिंगला ने अपने चाचा और भाई के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। निदेशालय ने बताया कि ये पैसा सिंगापुर स्थित नियंत्रित फर्मों को भेजा गया था। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है।
2: आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के यहाँ करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी, बैंक लोन से धोखाधड़ी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में जो काला धन कमाया है उससे जायदाद खरीदना, वो एक मामला सामने आया जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक कर आई थी हम समाज को बदलने आए हैं, क्या इन्होंने बदला कि रिश्वतखोरी से शुरू करते करते अब टैक्स चोरी भी करेंगे, काले धन से बेनामी जायदादें भी खरीदेंगे और बैंक लोन की धोखाधड़ी भी करेंगे।
1: नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। सीबीआई ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये संस्थान विद्यार्थियों को नीट स्नातक परीक्षा की कोचिंग देता है। मोंटेगांवकर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अभिभावक पर भी अपनी बेटी के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। सीबीआई की एक टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए कल एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की एक आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज शशि गार्डन इलाके से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ नकद धनराशि और 294 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार के लिए 15 दिन का

0: धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: यह अभियान सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकल, पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वहीं करोलबाग जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने बताया कि अभियान सख्त फील्ड मॉनिटरिंग और समर्पित सफाई व्यवस्था के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत साफ सुथरी सड़कें, प्रभावी धूल नियंत्रण और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ करिश्मा राय।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को नामित किया है। बोर्ड के सदस्य के लिए नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन और घोंडा से विधायक अजय कुमार महावर को नामित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त आतंकरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और निर्बाध समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया गया।
2: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये मॉक ड्रिल उप महानिरीक्षक और विमानन सुरक्षा समूह के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी तथा CISF के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। CISF, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम निरोधक दस्ते तथा अन्य एजेंसियों के कर्मियों ने इस समन्वित अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाना था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज एक यातायात परामर्श जारी कर बताया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम के 3 बजे तक भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने बताया कि भारत मंडपम में इस महीने के अंत में होने वाले 2 सम्मेलनों का कल अभ्यास किया जाएगा। इसके मद्देनजर पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, राजघाट, धौलाकुआं, मोतीबाग, सरायकाले खां, बीकाजी कामा प्लेस और वंदे मातरम मार्ग के साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सचिवालय में आज सिक्किम दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेश और देशवासियों को सिक्किम दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। आयुष मंत्रालय ने आज अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: परामर्श में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे धूप में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है। इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के संकेतों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अत्यधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों में तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। परामर्श में लू की स्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य और निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
0: इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में इस सप्ताह लू का येलो अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और DTC बस से अपने

0: कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्किटेक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
11: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
10: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली के राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार को जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवा

निवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाश अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वासनगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है मधुरिमा का, जिसमें मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस राग में हम किसी ना किसी राग के बारे में हम चर्चा करते हैं, और इस राग के बारे में चर्चा के साथ साथ उस राग पर आधारित गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में, वो राग है राग पूर्वी। आइए आगाज करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ, राग पूर्वी का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राग पूर्वी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही गंभीर और मधुर राग है। ये संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है जो दिन के चौथे पहर सूर्यास्त के समय गाया जाता है और इस राग का वातावरण अत्यंत शांत और करुणामय होता है।

यहाँ इस राग का वादी स्वर गा और संवादी स्वर ना है। वर्जित स्वर की अगर हम बात करें तो वो कोई भी नहीं है। इस राग में सभी सातों स्वर लगाए जाते हैं।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
1: पूर्वी का जिक्र हो रहा है आज मधुरी माँ में, तो राग पूर्वी की अगर हम आरोह की बात करते हैं तो सा रे ग म प ध नि सा और अवरोह सा नि ध प म ग रे सा पकड़ नि सा रे ग रे ग रे म प म ग रे ग रे सा है। और इस राग पूर्वी अपने आप में ही थाट का आश्रय राग है और उम्मीद करते हैं कि इस राग पर आधारित गीत आपको बहुत पसंद आए होंगे, जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं समेटने का वक्त आ चुका है। फिलहाल मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए क्लेवर, नए रंग, नए अंदाज और एक नई शुरुआत के साथ। अब आपसे रोज मुलाकात होगी इसी समय पर, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो खेल की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने CASA रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। महिला टीम चौथे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। सलीम टेटे को सौंपी टीम की कमान। और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 प्रतियोगिता कल से शुरू।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वें ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है इस समय हैदराबाद की टीम और वो चाहेगी कि और करीब पहुंचा जाए पहले और दूसरे स्थान के, जबकि चेन्नई की नज़र है कि पांचवें से छलांग लगाई जाए और चौथे स्थान पे अपना कब्जा बनाया जाए। इससे पहले लीग में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया, जबकि दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया।
1: आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53, कप्तान रियान पराग ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क को 4, वहीं लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी को 2-2 सफलताएं हाथ लगी। जवाब में दिल्ली की टीम की शुरुआत शानदार रही। पहले विकेट के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने 105 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने 51, वहीं केएल राहुल ने 56 रनों का योगदान दिया। अंत में कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 5 गेंदों में 18 रन बनाकर टीम को दिलाई। दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं कल खेले गए एक और मुकाबले में रॉयल

0: चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और पंजाब के लिए ये लगातार छठवीं हार है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स केयर।
1: पंजाब की छठी हार और रोज बढ़ता उसकी जीत का इंतजार, प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होती है अगर कहा जाए तो। 11वें खिलाड़ी की तरह काम करती है। प्लेऑफ पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय विशेष मौजूद हैं हमारे सहयोगी। विशेष, प्लेऑफ जो है आईपीएल को रोमांचक बनाने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। इस चार सीटर गाड़ी की पहली सीट पे कल आरसीबी बैठ गई है। कौन से तीन यात्री हैं जो सबसे आसानी से इस गाड़ी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अभी आपको?
2: शक्ति, जैसा आपने बताया कि आरसीबी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। गुजरात टाइटंस अभी दूसरे स्थान पर मौजूद है और वो 16 अंकों को प्राप्त कर चुकी है। अगर वो एक जीत सुनिश्चित करते हैं तो उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो
1: टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़े, लेकिन हमने देखा है कि एक ट्रेंड है आईपीएल का विशेष कि कुछ टीमें धीमे दरवाजे से आती हैं, चुपके से आती हैं और प्लेऑफ में जगह पाती हैं। कुछ टीमें अभी भी ऐसी दौड़ में हैं, छठे सातवें स्थान पर हैं लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी कौन टीमें हैं जिनके लिए अभी भी संभावनाएं, विकल्प और समीकरण प्लेऑफ का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं?
2: देखिए, अगर समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अगर दिल्ली भी देखी जाए तो उनके पास भी एक पॉइंट का जो एडवांटेज है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। केकेआर भी रेस में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो अपनी स्थिति पूर्णतः मजबूत कर सकते हैं अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतकर। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को भी एक एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो हमें इस आईपीएल में देखने को मिल सकता है कि टीमें 14 या 15 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगी। इस स्थिति में पंजाब के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है जो वो अंतिम मुकाबला खेलने वाले हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अंतिम मुकाबलों तक ये लाइन चलेगी और शायद आखिरी दिन जाके कहीं तय हो पाए कि हमारे चार प्लेऑफ के खिलाड़ी कौन होंगे। और अब आईपीएल से चलते हैं टेनिस के कोर्ट की तरफ, जहां पे कुछ और इतिहास बनते और बिगड़ते नजर आए। यानिक सिन्हा ने इटालियन ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे 1976 में एंड्रियानो पनाटा के बाद इस खिताब को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए।
3: सिनर ने फाइनल मुकाबले में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीता। इस सत्र में सिनर ने पेरिस मास्टर्स, इंडियन वेल्स मास्टर्स, मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन और इटालियन ओपन जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर इतिहास रचा है। 1 घंटे 44 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके नोवाक जोकोविच के बाद सिनर एटीपी इतिहास में करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर ने अब सभी एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिए हैं। जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतने के बाद ये कामयाबी हासिल की थी। मैदान में दर्शकों की भारी समर्थन के बीच सिनर ने धीमी शुरुआत से वापसी करते हुए अपना 10वां मास्टर्स 1000 खिताब और रोम में पहला टाइटल जीता। शुरुआत में कैस्पर रूड ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन लगातार सटीक शॉट्स लगाकर सिनर ने फाइनल मैच का रुख पलटा और ये यादगार जीत हासिल की। इससे पहले एलेना स्वितोलिना ने महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता था। एलिना ने फाइनल मुकाबले में कोको गफ को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो जब भी कभी हम टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र करते थे तो रोजर फेडर और राफेल नडाल की वो बैटल्स याद आती थी, और आज ये युवा खिलाड़ी इटली से निकल करके उसी तहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए नजर आ रहा है। और अब टेनिस के बाद इसी गेंद को ले चलते हैं रग्बी के मैदान की तरफ, जहां उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित CASA रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही। पुरुष टीम ने लगातार अपने शुरुआत के चारों मैच जीते, जहां भारत ने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। हालांकि फाइनल मुकाबले में उसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना किया था। इसके बाद किर्गिस्तान और मंगोलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ इस टीम ने वापसी की और चौथे स्थान के साथ इस प्रतियोगिता से लौट रही है भारतीय महिला रग्बी टीम। और महिलाओं की

0: गेम्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन यहां से महिला टीम की जो सबसे अधिक नजर होगी वो एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने पर होगी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कल से शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं भारत को इस प्रतियोगिता में अपने किन किन बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस शानदार सुपर 500 टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
1: पुरुषों के सिंगल्स मुकाबले में भारत और फ्रांस के बीच एक नई जंग का इंतजार है और भारतीय शटलर्स अपनी हालिया थॉमस कप सेमीफाइनल हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस महीने की शुरुआत में डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस से 0-3 से हारने के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत तीनों सिंगल्स मैच हार गया था। भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य इंडोनेशिया के मोहज़की उबैदिल्ला के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं तरुण मन्नेपल्ली फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव से भिड़ेंगे। किरण जॉर्ज 7वीं वरीयता प्राप्त एलेक्स लानियार का सामना करेंगे और एचएस प्रणॉय का मुकाबला क्रिस्टो पोपोव से होगा। एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा कारुनन और MR अर्जुन का 7वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव से सामना होगा। भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ियों में तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड की पिचामोन ओपर नेपुत से होगा। उन्नति हुड्डा का सामना चीन की हान कियानशी से होगा। मालविका बंसोड़ जर्मनी की यवोन ली से भिड़ेंगी और अनमोल खरब का मुकाबला डेनमार्क की लाइन होजार्क कर्जसफेल्ड से होगा। रक्षिता श्री संतोष राम और ईशारानी बरुआ भी चुनौती पेश करेंगी। देविका सिहाग क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम तथा रुता पर्णा पांडा और श्वेता पर्णा पांडा की जोड़ी भारत की ओर से चुनौती रखेगी, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे भारतीय दल का हिस्सा हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि उबर कप के ब्रॉन्ज मेडल की चमक और धारदार करने के लिए और शानदार और चमकदार करने का एक मौका भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंतजार कर रहा है। और थोड़ी सी कसक जो गोल्ड ना आ पाने की थाईलैंड ओपन में थी, वो भी शायद यहां पर कुआलालंपुर में मिटती हुई नजर आएगी। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं भारतीय युवा मुक्केबाजों के प्रदर्शन की, जो उन्होंने ताशकंद में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की युवा पीढ़ी की चमक बॉक्सिंग रिंग से निकलकर विश्व पटल पर चमकती हुई नजर आई। भारत ने कुल 44 पदक जीते इस दौरान, और इन्हीं पदकों में से एक स्वर्ण पदक विजेता हंसिका हैं। हंसिका इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और जो हमें बताएंगी कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। हंसिका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की तरफ से, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का देश का मान बढ़ाया। हंसिका, देश के बाहर जाना और इतना शानदार प्रदर्शन करना, आप सभी श्रोताओं को बताइए कि ये पूरी प्रतियोगिता का अनुभव आपके लिए किस तरह का रहा?
2: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मैंने पहली बार खेला तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दूसरी कंट्री में जाना, एरोप्लेन में बैठना, और ये टोटली एकदम नया एक्सपीरियंस था।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हंसिका, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद थी घर परिवार से लेकर की आपकी अकेडमी तक, तो स्वाभाविक है बहुत दबाव रहा होगा, तो आपने आखिर इस दबाव को किस प्रकार हैंडल किया है पूरी प्रतियोगिता में?
2: मेरे जो कोचेस थे वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे इस चीज के लिए कि मतलब कि डायलॉग था एक कि अब तुम फौजी की बेटी हारना, मतलब मेरे पापा ऐसी आर्मी में है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को देते रहते थे इस वजह से।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए
2: कभी डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ मेरे मैच में, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हुई थी जो कि रिंग में उतरने के बाद मेरी खत्म हो गई थी बेसिकली।
0: जी बिल्कुल, आपके रिंग में उतरने के बाद आपके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों में वो नर्वसनेस नजर आई हमें। अब ये भी बताइए कि इस उपलब्धि के बाद अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है हंसिका?
2: मुझे आगे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जूनियर में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं उसमें भी नेशनल में गोल्ड लाऊं, एशियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड लेके आऊं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। हंसिका के पिता प्रमोद अत्री भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, हंसिका ने हमें बताया कि वो फौजी की बेटी हैं और हर तरह का दबाव जो है वो झेल सकती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि हंसिका इस उपलब्धि से आप कितना खुश हैं और भविष्य में इस युवा बॉक्सर को आप किस मंच पे देखना चाहते हैं?
3: सुपर प्राउड है, और पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में और जो आसपास डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में हम अपने घर आए थे
4: जी।
3: इतना अच्छा जो है लोगों ने वेलकम किया है यहाँ पे कि हम आपको कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। पूरे मतलब कई हजार लोगों की जो भीड़ वहाँ से टप्पल

0: फीस लेने के लिए ढोल डीजे बाजे लेकर के बैनर लेकर के, तो मतलब इन चीज के लिए कुछ बोलना तो मेरे लिए तो शब्द भी जो है कम है। पूरे क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार है, है सर। इतना प्राउड फील हो रहा है कि पूछो मत, है नहीं सर। से हमें ये उम्मीद है कि सर ये आगे ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे और आगे चल के ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेके आए सर।
1: जी बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की उम्मीद है और हम भी यही शुभकामनाएं देंगे कि ये खिलाड़ी भविष्य में ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए बॉक्सिंग में। और हंसिका के कोच से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया जितेंद्र टोकस ने कि किस तरह से ये खिलाड़ी जो है अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ लड़ती रही है, जीतती रही है, तो देश को एक मजबूत खिलाड़ी मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
2: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
3: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
2: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: भारत और नॉर्वे दोनों

0: रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक

0: ने सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said, the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting.

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और गणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112341444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए

0: इंक्वायरी करेंगे, जानकारी निकाले लेंगे। और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
2: जी, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है, मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
2: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी।
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए
2: जी
1: थे।
2: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एन्यूमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ

0: दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमिनेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
1: जी
0: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेम्बर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेम्बर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
2: ना मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
0: बिल्कुल
1: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे जो सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि

0: घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते थे उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक

0: वो देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनों को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी कि स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं,
1: जी
0: उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे,
1: जी
0: तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-04-81 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना,
1: जी
0: उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है,
1: जी
0: जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे,
1: जी
0: लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है,
1: जी
0: तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था,
1: जी
0: क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
1: जी
0: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी

0: करना होगी।
1: हाँ वैशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी,
2: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कौन लिस्टनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
3: सर जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि अक्सर
0: हाँ
1: लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजम ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये एक महत्वपूर्ण पहल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी इस वर्ष निर्यात $863 दर्ज किया गया। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस निर्णय की घोषणा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 144 runs highest score. For Hyderabad, Pat Cummins picked up 3 wickets. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। सरकार ने इबोला के प्रकोप के मद्देनजर हवाई और समुद्री बंदरगाहों पर निगरानी और तैयारी के उपाय लागू किए। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, नीली अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: इस द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करेगा। आज एक त्रिकोणीय सहयोग और समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत और नॉर्वे के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की

0: यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एक उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौर में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से 2 देशों, वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: वियतनाम की यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ आपसी बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री अहन क्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की नई संभावनाएं तलाश करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में साझा हितों पर भी विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य में परिचालन की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक नए नियामक निकाय की स्थापना की घोषणा की है। ये कदम महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन गलियारे से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार एक समर्पित प्राधिकरण के औपचारिक गठन को दर्शाता है। इस बीच सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला LPG वाहक पोत SYMI लगभग 19,965 मीट्रिक टन LPG लेकर शनिवार रात गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पर पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री व्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। इसके साथ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? इनमें शोर नहीं बल्कि सुकून होता है। हर लफ्ज जैसे किसी ने दिल की स्याही से लिखा हो। इस बात पर मुझे एक शेर याद आता है, कुछ धुनें वक्त से नहीं हारती, कुछ नगमे उम्र भर साथ चलते हैं। जो दिल में उतर जाए एक बार, वो गीत कभी पुराने नहीं लगते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। फिल्म है वारिस।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर सिंगार अपने पसंदीदा चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हर गीत एक कहानी है। कभी सोचा है दोस्तों आपने कि पुराने गीतों में इतना अपनापन क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि तब संगीत सिर्फ बनाया नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था। अब चलते हैं एक और सदाबहार नगमे की ओर, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

दिल अजीब चीज है दोस्तों, कुछ आवाजें इसमें हमेशा के लिए बस जाती हैं। कई बार कोई गीत सुनकर लगता है कि जैसे जिंदगी थोड़ी थम सी गई हो, हम फिर से उसी पुराने मौसम में लौट आए हों।

इसी के साथ मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वक्त बदलता गया, मौसम बदलते गए, पर कुछ नगमे थे जो दिल में ठहरते गए। अब पेशे खिदमत है कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, कभी कभी कुछ गीत ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हमारे अपने जज्बात चुरा कर लिख दिए हों और उन्हें संगीत में पिरो दिया हो, और शायद इसीलिए बरसों बाद भी हमें वो गीत उतने ही प्यारे लगते हैं जितना हमने उन्हें पहली बार सुना था। चलिए अब एक और खूबसूरत मोती पुराने संगीत के खजाने से।

दोस्तों, कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, और समाचारों के उस पार कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हो जाएगा आपका ये दोस्त शमीम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत कर

0: करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने

मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति

0: निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TPA. He underlined that stakeholders on both the sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जूली, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, आगाज दास्तान सफर आप ही से हो। ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आग ले लग जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

बीते रिश्ते तलाश करती है, बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। अपनी माजी के जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है, खत के पुर्जे तलाश करती है। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज

0: इटली पहुंचेंगी। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेल्ले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

और गीत सुहाने में जो आप पहला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है आ गले लग जा, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह न दे सके, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अवतार, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अमर।

जैसे जीवित है याद गौरैया की उसके जाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है मन में खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, और ठीक वैसे ही याद करना तुम मुझे, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काला सोना, आवाज है आशा भोसले की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो, और फिर से वो मिट्टी गूंथ लो। फिर से दो बुत बनाओ, तुम में कुछ मैं और मुझ में कुछ तुम रह जाओ, और मुझ में कुछ तुम रह जाओ।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के

0: विश्व के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी है बुलाता उन्हें हम, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। इधर तुम उधर, तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, उधर तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, हे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया। किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है कलाकार।

बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को, कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। और आज सुरमई में जो आप अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बॉबी।

कुछ कदम हम चले, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले, फर्क बस इतना रहा, फर्क बस इतना रहा, हम चले तो फासला घटता गया, हम चले तो फासला घटता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है बरसात की रात। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से

0: आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदाती समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, PM Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना ससदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। जमाना कहता है इश्क जिसे, तुमसे वही बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, सफर पर चलते चलते ही कब कोई हमसफर मिल जाता है और फिर दुनिया, जिंदगी, सब कुछ बदल जाता है।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म 12 o'clock से ये गीत आपने सुना। इरादा न था मोहब्बत करने का, इरादा न था मोहब्बत करने का, मगर आपको देखा तो इरादा बदल गया। सोचा था अब कभी किसी को आंख भर के नहीं देखेंगे, आपको देखा तो नज़रों ने भी धोखा दे दिया।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म आंधी और तूफान से ये गीत आपने सुना। राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, ओ मेरे सनम तुमसे उतना ही प्यार किया है। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला तुमसे, बस हर लम्हा तेरे होने का एहसास किया है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संगम से ये गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से।

तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तुम नहीं कोई नहीं कसम खाई है मैंने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आपकी कसम से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी आपने गीत सुना। तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं, तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं कि हर धड़कन में तेरा ही नाम बसा बैठे हैं। अब कोई आरजू इस दिल में बाकी नहीं, जब से तुझे प्यार करने की वजह पा बैठे हैं। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आइए सुनते हैं अप्रैल फूल से ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत आपने अभी सुना। हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, मगर उनकी एक नजर मिली और वही मेरा ठिकाना हो गया। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मस्ताना से ये गीत आप अभी सुन रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, हम रही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम

0: प्रसन्नता हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मिलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments, and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen, and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability, and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration, and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between India and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations, PM Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation.

सुबह के 4:11:10 हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में अगर मिलजुल के सब कुछ किया जाए तो कितना आनंदमय जीवन हो जाता है, परंतु आज के समय में कोई साथ चलना ही नहीं चाहता और ना ही कुछ बांटना चाहता है। कोशिश कीजिए दोस्तों किसी के साथ चलने की और प्यार बांटने की, बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म तकदीर से।

दोस्तों, हाथों की लकीरें और किस्मत यानी तकदीर का तो हमारी जिंदगी में बड़ा हाथ होता है, पर अगर हम अपने कर्म एक प्लानिंग के साथ करना शुरू करें तो देखना जिंदगी ही बदल जाएगी।

अनवर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म विधाता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, तदबीर से हम बिगड़े हुए काम भी संवार सकते हैं और साथ में अगर अपने पर भरोसा हो तो फिर सोने पे सुहागा।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी से ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से।

0: दोस्तों, गम और खुशी, धूप और छांव, सच और झूठ के बीच में चलने का नाम ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं चलती का नाम जिंदगी से ये गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आराधना से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी जो है हमें जान से प्यारी, जो हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना देती है और जिसके साथ हम अपना सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

साजन बिन सुहागन फिल्म से येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है और एक जंग की तरह हम जिंदगी भर समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं। पर समस्याओं को दोस्तों सुलझाना तो है ही, तो क्यों ना हंस के ही सुलझा लिया जाए।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं मुनीम जी की फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

हमारा भी बिछड़ने का वक्त आ गया है। अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में हमेशा मन यही करता है कि सबसे पहले प्रभु का सिमरन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

दोस्तों, सुबह के समय जब हम वॉक के लिए जाते हैं पार्क में, तो कोयल की मधुर ध्वनि कानों में जरूर सुनी होगी आपने। उसको सुनकर मन आनंदित हो उठता है। और इसी से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मीठे शब्दों का दूसरे पर कितना असर पड़ जाता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है, और उसी के बीच में हमें अपनी मस्ती में जीना है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म राम और श्याम से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।